तरंग छवीली नागरी वह बारंबार रटे रट राधा मंत्र को उन मोह लिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है बावरों का देश है वृंदावन, यहां ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है, चाहे जिस भाव के जन हो यहां आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लगोटी धो दे पाए गए रथाते पाए क्या क्या। आज भी हमारी सबकी हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है परा विद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कह रहे लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं खगमृग पशु पंछी राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वह अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही लाडली जू। मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए थे,

जो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की आज कैसे कोई जानेगा राधा तत्व। जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लालजी जी महाराज प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

हे लाडली जू, आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछ कर पान की बीड़ी, और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

वो धूप आरती करती है, अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुहि फूल निकुंज बना वही ललनातों को नित ही नित लाल लड़ा वही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके ये प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्य आदि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर्गा वही, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके मुरली जो बजा वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र।

प्रवेश नहीं। यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे वह प्रवाह बढ़ा वही मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई। ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना ना करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया। मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई निरख छवि कान गई। बीत क्यों

वही लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो। वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की। बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आकर हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे कई भांति बुले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

कीजिए। अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है आज तक लाल जो परिचय नहीं जान पाए। हमारे आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देख्यो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, उनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर, श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार। हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है, ये केवल महारानी जी के ही बल पर है।

किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद। कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहाँ यहाँ ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का। क्योंकि जैसी हरिवंश परम कोमल चित परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया। कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल रहे, श्री जी के कैसे तुम्हें बताए कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड। कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला। किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

0: मोती जन
1: प्यारी जू के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की बरसात। कोई राधा नाम ले मेरे को पुकार रहा है, परम कोमल चित लाड़ी परम। मदन टेर के बाबा का जो चरित्र रहता है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाड़ली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जो नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जो कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जो कठोर हृदय के हैं, इसलिए संग दोष से कठोर, वैसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है, लाल जो का भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जी। वैसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र से दिव्य नेत्र देखा, चरणों में लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी। बड़ी करुणामय सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रही हो, ऐसे अश्रु गिरते जा रहे हैं। और चपल चली शीघ्रता पूर्वक, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा अपना समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी। गजगामिनी प्रिया जो मतवाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से। संग किशोर किशोरी सखी सुख में सनी, सुखदायक लायक नित्य विहारिन की अनी। सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके, देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामिनी जी पधार नेत्र, लाडली जी के नेत्र, दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो। सखियों ने देखा तो बाल तमाल बीच गुलाल उड़ा वही, मधुपुंजन को जनो कंज पराग चला वही। नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। श्री लाडली जू देख के उनके इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे, व्याकुल हो रहे, कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए प्यारी, सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो ये जो महल रचना करते हो कुंज की, जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं, बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

कि श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से, तुम्हारा नाम क्या है?

परी, क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लालजू महाराज सहचरी वपु है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू मेरा नाम है, ये श्यामा जू और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव, पर पूरे ब्रज में श्यामा जी तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जी और कौन श्याम जी है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती है, हा प्यारी जू आप कैसे रूस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया ये नहीं समझ पाती कि लाड़िलो के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा ये एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं बस। देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नर्क भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नर्क स्वर्ग अपवर गया आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो,

आनंद को। तुम राधा नाम जपक, राधा रूप उपासक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो, लाडली जी ने अपने हृदय से। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है, जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गए, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाते हैं ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते हैं।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती होगी।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा? तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट है, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
5: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का? नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिए अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
5: यस सर, यस सर, देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
5: 9-10 ईयर्स।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। yes. और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
5: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
6: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है। उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम चाहेंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है? जवाब दो।
7: सर, हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
7: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
7: हमारे ही हुआ।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
6: सर, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं YouTube ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने e-sports भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
6: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
6: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
6: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर All kinds of situations. जो आप कर रहे हो वो सही है।
6: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
6: Sure,
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
7: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हज़ार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
1: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
7: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस एक साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की। हाँ, फ्रॉड है।
1: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
7: हाँ, मैंने किया है।
1: आपने कितने पैसे दिए थे?
7: मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसे हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है।

विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है। बिना समझे मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1,00,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है। मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो, अगर ये कर सकते हो। यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो, तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग
someone who can solve

अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं, जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या, कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो,

0: फ्यूचर आपके लिए है।
1: लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है, तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं, और पहले मैं यूट्यूब पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गूगल पे और यूट्यूब पे, क्योंकि अगर गूगल पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूट्यूब पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे, फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI। अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा। कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा ChatGPT पे जाकर के लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो ChatGPT पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा, उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जाकर के मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले 1 साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो, ऐसे नहीं करते ना। 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो 1 साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो 1 साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10, यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है क्या मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है AI जनरेटेड साउंड को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट ChatGPT से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है,

साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कंटेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, इतना क्यों सोच रहे हो। कभी कभी ये लाइंस मोटिवेशन नहीं प्रेशर बन जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर। क्या हर वक्त पॉजिटिव रहना जरूरी है या कभी कभी अपनी फीलिंग्स को फील करना भी हेल्दी होता है। मेरे साथ हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है?
1: बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया है। टॉक्सिक भी है और पॉजिटिविटी भी है, तो जरूरी बात है जब पहला शब्द ही टॉक्सिक आ रहा है तो पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ तो मिक्सचरिटी होगी होगी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि जब किसी को पॉजिटिव करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, उनको बार बार, वो चाहते कुछ और हैं लेकिन उनको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव ही आपको सोचना है करना है, और उस व्यक्ति की अपनी मेंटल स्टेट नहीं है उस चीज़ को सोचने की। हमारे थॉट भी इस तरीके से होते हैं, एक होते हैं राइट थॉट और एक होते हैं पॉजिटिव थॉट। राइट थॉट वो है कि आप जो चीज़ जैसी है वैसे ही आपने बताया, उसको कहा जाता है राइट थॉट्स।

0: लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव थॉट्स को कहा जाता है कि गलत सिचुएशन में भी आप उसको अच्छा कैसे देख सकते हैं। जो यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात कही गई, ये एक्चुअल में राइट और रॉन्ग थॉट की बात है। जो राइट थॉट है माने जो व्यक्ति गलत है उसको हम गलत ही कह रहे हैं, जो राइट है उसको हम राइट ही कह रहे हैं। तो इसको राइट थॉट्स कहे जाते हैं कि आप गलत नहीं है, कि वो व्यक्ति वैसा है, लेकिन अब हमें अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव थॉट्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव है हमें ये पता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन या कुछ ना कुछ सोचना है, उसको पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है। जो इनसे भी ऊपर उठते हैं उनको कहा जाता है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट का मतलब है कि रफ से रफ सिचुएशन, आपका दुश्मन सामने खड़ा है, आप उसके लिए भी वेल विशर हैं। जब ऐसे थॉट हमारे हो जाते हैं तब हमें उन लोगों के बीच में उन लोगों की उपाधियां दे दी जाती हैं, जैसे महात्मा हो गए, देवात्माएं हो गए, उनको कहा जाता है। लेकिन हम सब अपने आप को उस लेवल पर नहीं देखते, तो हमें ये लगता है कि जो व्यक्ति गलत है उसे गलत हम क्यों ना समझें, है ना। और फिर कोई कह रहा है कि नहीं आप उसको गलत नहीं समझो, आप उसको सही समझो, आप उसके प्रति। अब जब वो प्रेशराइज हमें मिलता है तो उसे कहा जाता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जो हमें प्रेशर दे रहा है दूसरों को पॉजिटिव सोचने के चक्कर में। हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर सप्रेशन ले रहे हैं, अपने अंदर एक दबाव दे रहे हैं जिसमें मुझे खुशी नहीं हो रही है। और जब मुझे खुशी नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही है और वो टॉक्सिक ही बनेगा। तो टॉक्सिक ही इसको ले तो ज़्यादा बेटर है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ना कह करके टॉक्सिक थॉट कहना ही इसको राइट वे में बात होगी। क्योंकि पॉजिटिविटी में कहीं भी टॉक्सिक चीज आ ही नहीं सकती है। पॉजिटिविटी का मतलब ही सिर्फ पॉजिटिव है। अगर दूसरा हमें एक सजेशन दे रहा है कि आप सोचे, ये उसकी ओपिनियन है, चूज आपको करना है कि आप उसको किस वे में लेना है। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव थॉट्स बन जाएंगे और वही फिर टॉक्सिक बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे अभी ही 3 लड़कियों ने जो सुसाइड किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो आ रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है बातें कि उनके फादर ने सिर्फ उनको मना किया कि आप मोबाइल में कोरियन चीज़ें या उसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना लें, सिर्फ उसको मना करने के पीछे। अब वो राइट ही था, रॉन्ग तो नहीं था, अगर हम सब देखें तो वो रॉन्ग नहीं है कि उनको मना किया जा रहा है ज़्यादा टाइम मोबाइल्स में नहीं आप रहो, लेकिन उनके अंदर वो इस कदर रच बस गई है कि उनको अपनी मौत ज्यादा इजी लगी, बशर्ते उन चीजों को छोड़ने। तो पॉजिटिव थॉट उनके लिए टॉक्सिक हो गया है। तो था उनके फादर का पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने उसको टॉक्सिक के रूप में लिया और अपने ही जीवन की जो कहे कि एक कहानी थी, एक सुंदर जीवन बनता, तो उसको उन्होंने खत्म कर लिया। इसी को कहा गया है कहीं ना कहीं टॉक्सिक और पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी क्योंकि पॉजिटिविटी में कभी टॉक्सिक नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल सही।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही है अच्छा, यानी बढ़िया साइड, और बढ़िया साइड को हर कोई बढ़ाना ही चाहेगा। और इसका अगर हम स्टार्टिंग बहुत छोटे टाइम से कर दें, आज से कर दें, चलो आज मैं 50 साल की हूँ लेकिन मेरा जीवन हमेशा उतराव चढ़ाव में रहा है और मैं हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ, पॉजिटिव कम, लेकिन अब मैं अगर बदलना चाहती हूँ तो आज और अभी मुझे अपने आप को पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा ले जाना चाहिए। जितना मैं पॉजिटिव रहूँगी, और जो मैं कहती हूँ कि जैसे नेगेटिविटी आज हम चारों तरफ देखते हैं ये बढ़ रही है, ऑफकोर्स बढ़ ही रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल,
0: तो ये नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, तो इसको काटने की जो दूसरी चीज है, जो वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको देते हैं, तो जितना वायरस है उस लेवल का एंटीवायरस दिया जाता है। तो आज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है हमारे चारों तरफ, तो उसको काटने के लिए हमारे को फिर पॉजिटिविटी, ऑफकोर्स पॉजिटिविटी ही लेना पड़ेगा। तो उसी लेवल का, उसी क्षमता का उतना ही जो कहें अमाउंट, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने जीवन के हर उस नेगेटिव को काट सकें जो हमारे अंदर अब आ चुका है, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे हर चीज के बिहेवियर में, इनफैक्ट डेस्टिनी में भी हम अब देख रहे हैं कि लोगों को नेगेटिव जो है वो अचीव हो रहा है। और ये ऑल बिकॉज ऑफ मी है, ये दूसरों के कारण नहीं है। जो हम अगर अच्छे से गांठ बांध लें कि मैं आज अगर दुखी हूं तो वो मेरी वजह से हूं, मेरे साथ कुछ भी अगर हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूं। बीच में कई पहलू, कई चित्र हम देखते हैं, लोगों को हम नाम दे देते हैं, उसका डिबिट हम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे आसपास हो रहा है उसका मूल कारण, जो मेन जो रीज़न है वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच, मैं अपने बोल, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता हूँ तो वो मेरी डेस्टिनी तक ज़रूर अचीव होता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर क्या उतना पेशेंस है, मैंने कोई चीज़ बिगाड़ी है, आज मैंने कोई चीज़ बिगाड़ दी है, तो एक क्षण में कोई चीज़ जब बिगड़ी नहीं है तो एक क्षण में वो चीज़ बनती भी नहीं है। तो उसको अगर बनाना है तो अगर मैं और नेगेटिव होता हूँ तो वो बनती नहीं, वो और बिगड़ती है। चाहे वो बात ही है, घर में कोई बात हो गई, मैं नेगेटिव हूँ, चार लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, बातें भी दे रहे हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी ही बढ़ा रही हूँ। मैंने अब एक को अपनी और साइड कर लिया, यानी नेगेटिव बना दिया, धीरे धीरे तीसरे को भी नेगेटिव बना दिया, तो बात सुलझेगी या बिगड़ेगी?
1: बिगड़ेगी।
0: तो उसी प्रकार से नेगेटिव को काटने के लिए मुझे पॉजिटिव होना, मुझे अपने आप को चेंज करना, ये बहुत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: अच्छा, जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई बार बार बोले सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नेगेटिव फेज में चल रही है, तो ये क्या सब ठीक हो जाएगा कहना कब हार्मफुल हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए?
2: जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी हम बात समझाने जा रहे हैं, उसकी मेंटल स्टेट को देखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए कहा भी जाता है कि दवाई नब्ज़ देख के दी जाती है। किसी को नब्ज़ अगर कोई हाई डोज नहीं ले सकता है तो उसको बहुत मीठी गोलियों से दिया जाता है और तब जाके वो उस गोली को लेता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही हार्ड दे देंगे तो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा और उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मन की बात को, मन की स्थिति को समझने की कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है और उसके मन की स्थिति इस समय सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहती है, उसको नहीं चाहिए कोई सजेशन। एक्चुअल में आज की जो समय चल रहा है वो इसी तरीके का है। आज हर कोई अंदर भरा हुआ है और हर कोई अपने आप को खाली करना चाहता है, लेकिन उसने अपने माइंड को एक चीज़ दे दी है, मेरे

0: बात कर रहा है उससे अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर बैठे लोग हैं उनके पास बैठने के लिए आज किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर ही है, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि एक दूसरे का चेहरा भी कभी ढंग से देखा हो। पहले यही होता था कि मोबाइल्स नहीं होते थे और चेहरों के भाव ही समझ जाते थे। आज न माता पिता न बच्चे किसी के भी भाव समझ नहीं पा रहे। अगर कोई समझ रहा है तो शायद उनको समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ता है, एप्पल दिखाना पड़ता है, तब वो ए शब्द जानता है, ए लिखना जानता है। अगर हम उसको पहले दिन ही एप्पल ना दिखा करके ए लिखना सिखाएं या पूरा एप्पल लिखना सिखाएं तो शायद नहीं कभी सीख पाएगा। तो इसके लिए पहले उसको रटाया जाता है, उसके माइंड में वो चीज़ फीड की जाती है। सेम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है उसको ये कहने के लिए कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है वो काम आप करें। आपको गेम्स में खुशी मिल रही है, आप गेम करें। आपको म्यूज़िक में खुशी मिल रही है, आप म्यूज़िक सुने। आपको डांस में खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग में खुशी मिल रही है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है उस काम को करें। लेकिन वो खुशी का जो प्रोसेस हम, वो मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि हमने हॉबी किसको समझ लिया है, मुझे कुछ नहीं करना है उसको हम हॉबी कहते हैं। वो हॉबी नहीं है, उसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो कब तक हम भागेंगे? भागने से तो कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने मन को जो मुझे हेल्दी कर दे, वो टाइम हमें हेल्दी टाइम अपने आप को देना है, ताकि मैं अपने इंटरनल में स्टेबिलिटी ला सकूं। जब मेरे इंटरनल में वो पीसफुल होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, तो हमें किसी की भी बात पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति पहले ही भरा हुआ है, उसके बाद से दूसरा भी कोई बोल रहा है, तो वो बातें फिर चुभन हो जाती है और वो व्यक्ति इतना इरिटेट हो जाता है कि जो सही लोग हैं उनके पास भी कभी नहीं बैठना चाहता है, वो उनसे दूरी बना लेता है और वो बहुत हार्मफुल है। हम एक गेम कराते हैं, आपने भी शायद देखी हो, कि बैलून को फुलाया जाता है और बैलून को तोड़ने के लिए कहा जाता है। तोड़ने का कहा भी नहीं, लेकिन तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। एक जगह हम यही गेम करा रहे थे, तो एक बच्चे ने अपना बैलून, जब दूसरा उसको फोड़ने आ रहा था, उसने अपना बैलून खुद फोड़ दिया। और ये सिचुएशन बहुत हार्मफुल होती है कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ हम और आती हुई देखते हैं तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने लिए ही उसका हम जीवघात कर लेते हैं, हम अपने लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हम लोगों से रिलेशन ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जिस भी नेगेटिव व्यक्ति हो रखा है उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं करके पहले नेगेटिव को कम करने के लिए उसको खुशी कहाँ से मिलती है वो खुशी की बातें बताना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, का टॉक्सिक पॉजिटिविटी इमोशंस को सप्रेस करने की आदत बना देती है?
2: जैसे कि ज्योति जी से पहले बात हुई कि या तो हम टॉक्सिक ही बोल लें या तो पॉजिटिविटी बोल लें, लेकिन क्योंकि ये वर्ड आ चुका है और ये वर्ड हमारी आने वाली ये जो जनरेशन है जो चल रही है जनरेशन जी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस कर रहा है कि क्या ये चीज़ें जो आपने कहा हमारी इमोशंस को सप्रेस करता है, बिल्कुल करता है, या क्योंकि इसके साथ टॉक्सिक वर्ड जो लगा है तो जहाँ जहर होगा वहाँ वो जो मरने जैसी फीलिंग है, दबने जैसी फीलिंग है, वो तो आएगी ही आएगी, ओबियस है। लेकिन यहाँ ये बात है कि पॉजिटिविटी यानी सामने वाला आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, अच्छा समझा रहा है, और कई बार माता पिता जो हमारी लाइफ में होते हैं और वो हमारे को प्रेशराइज कर देते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें कहता है अरे तू इतना गलत नहीं सोचते, अरे ऐसे नहीं सोचते, ये मत सोचा कर, ये तू गलत सोचता है। तो लेकिन एक मौका जो हमें हर व्यक्ति को देना चाहिए कि क्या सोचते हो उसको क्लियर बोल सके, मैं समझती हूँ उसे मिलता भी होगा, हर एक को अपने भाव व्यक्त करने का मौका यहाँ नहीं तो कहीं मिलता तो जरूर होगा, और अगर कहीं भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है तो वो लिख तो सकता ही है। और हम जहाँ की हम स्पिरिचुअल जो मैं मानती हूँ कि अगर लिख भी नहीं सकते हो तो भगवान के आगे बैठकर आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सब में असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपना ही एक जोन बना लेते हैं जिस जोन से वो बाहर आना नहीं चाहते और किसी को अंदर आने देना भी नहीं चाहते। कोई इतना इजीली सहज उनके कमरे में घुस नहीं पा रहा है, उस जोन में घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से फिर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। और क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो इसलिए उन दोनों ने दोनों ही शब्दों को जोड़ दिया, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक हूँ, आप पॉजिटिव हो, इसलिए मुझे फोर्स मत करो। लेकिन इस दिशा में अगर हम बढ़ते चले गए तो ये हमारी जिंदगियों को, हमारी हर चीज़ को ये तहस नहस कर देगा। इसलिए इस वर्ड से, इस दुनिया से, इस कमरे से बाहर आइए। अपना जो आपने जोन बना लिया है वो किलिंग जोन है, वो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से खराब करेगा, धीरे धीरे फिजिकल इमोशनल हर चीज़ से आपको बिगाड़ देगा। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, बाहर आ जाएं, तो बहुत बेहतरीन दुनिया है। आपके नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं आप उसको पहले शेयर करें, जिससे भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। कई बार हमने देखा है कि एक बार शेयर करते हैं, दो बार शेयर करते हैं, तीन बार शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसी से भरे हुए, वो इस सीन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट यू वांट, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि सुनाने के लिए मैंने कईयों को सुना दिया लेकिन मैं अभी भी वहीं हूँ। और अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या ही उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि करना तो मुझे ही है। मैं जिस कमरे में कैद मैंने अपने आप को किया है, अंदर से कुंडी मारी है, बाहर से कुंडी नहीं है कि कोई भी आके खोल देगा, ये कुंडी मैंने मारी है, अंदर से मारी है, इसलिए मुझे ही उठकर उस कुंडी को खोलना होगा, और कोई इस कुंडी को खोल ही नहीं सकता है। इसलिए इतनी हिम्मत, इतना करेज अपने आप में लाएं और इस कुंडी को खोलें, और खोल करके लोगों को अंदर आने दें या खुद बाहर आ जाएं। क्योंकि उस बंद कमरे में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक।

0: मिलते हैं सुकून?
1: नहीं, बट कभी कभी हाँ।
0: एक्चुअल में सैडनेस में कभी सुकून है ही नहीं। वो जैसा कि पहले भी बताया है कि हमने उस चीज को समझ लिया है कि हाँ वो सुकून दे रहा है, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम सदा सैडनेस में नहीं रह सकते, लेकिन सदा खुश
1: बिल्कुल
0: रह सकते हैं। सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब खुशी मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन दुख परमानेंट नहीं है, है ना? दुख से कभी भी हमें जो कहे कि एक हेल्दी कहे, वो नहीं हो सकता। जब हेल्दी नहीं रहते तभी दुख आता है, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है, तभी सैडनेस होती है। तो हेल्दी तो हम इसको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हमने अपने आप को ये समझा लिया है कि शायद यही जीवन का दस्तूर है और यही जीवन है कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंगर बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा गुस्सा नहीं किया जाए तो काम ही नहीं होता है। एक्चुअल में दोष मैं नहीं कहूँगी आज के बच्चों का है या किसी का है, दोष है हमारी जो चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमारी दादी हुआ करती थी तो उस समय पर क्रोध करना, माना उनकी सिर्फ आँख ही अगर वो दिखा दे तो उसको ही क्रोध समझ लेते थे, गुस्सा गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा समय बदला तो एक थप्पड़ लगा दिया करते थे, तो पता चला कि बहुत देर तक बात करने के बाद एक थप्पड़ लगने पे काम होता है। तो इतना पेशेंस था उनके पास कि एक थप्पड़ तक वो टिल वेट करते थे, पेशेंस में रहते थे। और समय बीता तो वो चीज़ें बढ़ गई। अब जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है। आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलेंगे, अगर आज की जनरेशन से, तो यही कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहते कहते कहते उनके पास सच में ही उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब टाइम नहीं है कि हम पेशेंस रखें, अब टाइम है बस मारो और काम करो, काम करवाओ, क्योंकि वही उनकी नेचर बन रही है। लेकिन वो नेचर क्या उनके लिए खुद से पूछ के देखे, नेचर वो अच्छी होती है जो दूसरों को देना, वही अच्छा है जो मुझे खुद के लिए पसंद है। क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के काम कराए तो मुझे पसंद होगा, अच्छा लगेगा? क्या मुझे कोई गलत बोल करके काम कराना चाहे तो क्या हम करेंगे? या 24 घंटे हमें गलत ही बोलता रहे तो क्या मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हमारा मन ही वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसे गुस्सा नहीं चाहिए, जिसे प्यार चाहिए। लेकिन आज प्यार की परिभाषा हमने बहुत खराब कर दी है। प्यार का पता ही नहीं है किसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। प्यार का मतलब है, अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो प्यार का मतलब है कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर सकती
1: हूँ। बिल्कुल।
0: तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या मुझे दुख में खुशी मिलती है, क्या मुझे उदासी में कभी खुशी मिलती है, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है या हमारी और घट जाती है? घटती है ना। तो ऐसी ही जो चीज़ मेरे जीवन में से डे बाय डे घटा रही है चीज़ों को, तो वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है? तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी जो चीज़ है वो खुशी ही हेल्दी है। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी ये नहीं कहा गया है रोने जैसी खुराक नहीं या दुख जैसी खुराक नहीं, हमेशा ये कहा जाता है खुशी जैसी खुराक, क्योंकि वही हमें हेल्दी बनाता है, वही हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व करता है।
1: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आपका क्या कहना है इस पे?
2: जी जैसे कि कहा कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपने एक एक पॉजिटिविटी जोड़ रखी कि हेल्दी हो सकता है क्या। तो वही बात है कि जैसे मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड है कि कितना भी नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव रह सकता है। ये आपकी अपनी क्षमता है, हर एक के साथ ये लागू नहीं होता। सैडनेस जो कि नॉर्मल नहीं है, एंगर कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन कहें, ये सब नॉर्मल इमोशंस नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और इसको अंदर रखने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है नेगेटिव को एक्यूमुलेट यानी संभालने के लिए, रखने के लिए। और वहीं पर आपने एक नेक्स्ट जो वर्ड डाला है वो हेल्दी। तो हेल्दी इज हेल्दी, ये तो है ही पॉजिटिव। तो जैसे कहते हैं कि जहर जहर कभी अमृत हो सकता है क्या?
1: नहीं,
2: लेकिन हाँ हो सकता है अगर धीरे धीरे धीरे धीरे एक पर्सन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, चाणक्य जी ने दिया था, वही जहर उनको इतना बलशाली बना देता है कि शत्रुओं के आगे उनका जहर काम नहीं करता है ना। शत्रुओं के दिए गए जहर से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

0: तो बात यही है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है, उसको किस दिशा में लिया है। मैंने अपने जो क्रोध है उसको अपनी ऊर्जा बना ली है, ठीक है, मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उसको अपना ईंधन बना लिया है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो दिस कैन बी हेल्दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चीजें कभी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारी ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होने लगती है। यानी अंदर आग लगी है तो अंदर का जो कपूस है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो जलाए चली जा रही है, और अगर अच्छाई जल रही है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा ही घर एक दिन जल जाने वाला है, तो ये कहाँ से हेल्दी हो सकता है।
1: सही बात। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: ज्योति जी, सोशल मीडिया ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे नॉर्मलाइज कर दिया है?
2: इसकी अगर हम बात कहें तो टॉक्सिक शब्द को पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चीजें हम जो लोग देख रहे हैं टॉक्सिक ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान है, फोकस है जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया में। आजकल सारी जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला है, हर जगह नेगेटिव ही न्यूज़ है। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप टेलीविज़न ऑन करें, चाहे आप मोबाइल्स में कोई स्क्रॉल करते करते कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज़, उसमें क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें जो कि देखते देखते हमारे अंदर वो इमोशंस बना रही हैं, वैसा ही हमें बनाती जा रही है अंदर से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जितना सुनने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर इंटरनल, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो जा करके प्रिंट हो रही है। और जब वो प्रिंट हो जाती हैं तो नेचुरली मेरे भी जो नेचर है, मेरे भी बिहेवियर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आज किसी बच्चे ने देखा कि छोटेपन में एक छोटी सी बंदूक हाथ में दे दी गई कि खिलौना है, अब उसे वो खिलौना चलाने आया, थोड़े दिन बाद उसने बड़ा वो ले लिया।
1: सही बात।
2: तो वो चीज़ क्या है उसका इम्प्रेशन, फिर उसको ये लगता है कि नहीं मैं तो ये चलाऊँ तब मुझे आनंद आएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, हम क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम ख़राब चीज़ देखते जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ही पनपेगी, वही टॉक्सिक बन जाएगा। आज कैसे बच्चों को सुसाइड करने का इतनी हिम्मत हो रही है, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उनको वो ओपिनियन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब एक सीरियल आया करता था, सबने देखा, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्राइम पेट्रोल नाम से, तो जी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू आया। एक बच्चे ने जो कि घर में रहता था और बहुत छोटेपन से ही वो टीवी पे देखता था और उसको क्राइम पेट्रोल ही बहुत अच्छा लगता था, वो देखने लगा। उनके घर में ही, जिसके घर में वो काम कर रहा था और बड़े बच्चे की तरह उसको वो पालते थे, उनके उसके मन में उसको देख करके आया कि मैं भी ऐसा करूँ। और उसने घर में छोटी बच्ची जो कि उसके पास ही रहती थी, उसको ही भैया कहती थी, उसके साथ ही, सिर्फ उसने उसको देख करके उसकी उसको भी मार दिया और घर का सारा सामान लेकर के चला गया। जब पकड़ में आया, क्योंकि प्रोफेशनल तो था ही नहीं, जब पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में ये सारी जितनी भी प्लानिंग थी ये कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई, कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? तो कहा मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उससे मैंने अपने माइंड को जो है मैनेज किया, मुझे सारी टेक्निक्स आई, कहाँ मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स हटा देने हैं, कहाँ कैसे करना है, वरना हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ों को जो हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे तो नेचुरल पॉजिटिविटी ही लोग लेंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिविटी देने के भी और नेगेटिव देने का भी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या हम बिना टॉक्सिक हुए पॉजिटिव रह सकते हैं?
2: बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने दादा दादी जी को भी देखते हैं, और ये फिर भी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं तो हम उनके पीछे का भी सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल ही चक्की पे आटा पीसते थे और गाय भैंस ही जो उनको पालन करते थे, पालते थे, उनके द्वारा ही अपना जीवन संचालन करते थे, जहां लाइफ बहुत स्लो थी, जो हमारी दिशा में हम देखते हैं तो लाइफ बहुत स्लो थी, लेकिन लाइफ स्लो होने का मतलब सोच भी बहुत स्लो थी। तो सोचने में स्लोनेस लाना, इसका मतलब नंब होना नहीं होता या डम्ब होना नहीं होता, स्लो होने का मतलब है उतना ही स्पिरिचुअल थे। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आज भी अपने जीवन में महत्व देते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उतना ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना ही हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि टॉक्सिक हुए बिना हम इतना जीवन जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता ही नहीं कि टॉक्सिक हुए बिना ऐसा हो सकता है। हम गुस्सा हुए बिना किसी से अपने काम नहीं करवा पा रहे, हम गुस्सा हुए बिना कोई काम खुद भी नहीं कर पा रहे, आसपास जितने लोग हैं हमें लगता है गुस्सा कर देने से वो फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा तो करना जायज़ है, बनता है। और इसीलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि गुस्सा तो नॉर्मल है। वाकई में अगर देखें तो नॉर्मल तो नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। हमने तो धारावाहिक में भी ऐसे सीन्स हमारे दिखाए गए हैं जो कि मैं नहीं मानती वो सत्य होंगे, कि हमारे देवी देवताओं को भी गुस्सा करते हुए दिखाया है, जो मेरा मानना है कि वो सत्य नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिक्सिंग की गई है, क्योंकि देवी देवता भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर अगर गुस्सा कर लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। अगर वो गुस्सा होते तो गुस्से को कभी भी नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव साइड में नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल सही बात।
2: तो हम वाकई में पॉजिटिव रह सकते हैं और बिना टॉक्सिक हुए अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये देखना होगा कि मैक्सिमम मैं कौन से लेवल पे रहता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा सर्कल है या जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो भी मैं खा रहा हूँ या जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं।
1: बिल्कुल,
2: जो मैक्सिमम होगा वो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। आप दो बच्चे हैं घर में, एक को आप गुरुकुल में रखिए या साधुओं संतों के बीच में रखिए, और एक को जो नॉर्मल जो आज का है माहौल उसमें रखिए। डीजे भी है, सब कुछ है, बार है, डिस्को है, स्कूल है, लाइफ है, सब कुछ है, और एक को वहाँ जंगलों में रखिए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जितना ही वो शांत होगा यहाँ वाला उतना ही हाइपर होगा, वो जितना ही स्लो है उतना ही फास्ट। लेकिन जितना ही स्लो का मतलब स्लो नहीं कहूंगी, जितना ही स्लो होने के कारण उसकी जो क्षमता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्षमता है, यहाँ उसमें वो जीरो होगा। और अगर थोड़े बहुत नंबर मिल भी जाएं तो 10-5 ही मिलेंगे, यानी उसका अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो 10%, अगर उसके अंदर सहन शक्ति है तो 1%। तो इस तरीके से हर चीज़ अगर हम देखते हैं तो वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अपना माहौल बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उसके बाद अपने जीवन में देखिए तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मेरा यही है कि किसी को भी अगर समझना है या समझाना है तो सबसे पहले उनके मन के भाव को समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल।
3: अपने मन को शांत करके पहले उनको सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही उनके मन को जब दिशा बदलेगी तभी उनकी दशा भी बदलेगी, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। तुरंत अपने अनुभव या अपनी चीज़ें शेयर नहीं करें, उनके आगे थोपे नहीं किसी के ऊपर, हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से उनको उनके तरीके से ही दें। अगर बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ही चीज़ दी जाएगी। अगर हम सोचे कि बुजुर्गों की तरह दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर उनके मन के हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो हर एक सिचुएशन को संभालना बहुत इजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, पॉजिटिविटी तब तक हेल्दी है जब तक वो हमारे इमोशंस को डिनाई नहीं करती। अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना, ये

वीकनेस नहीं इमोशनल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का दिल से शुक्रिया इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

इंसानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later.
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो।

किस चीज की जरूरत होती है, आखिर किस चीज की उन्हें नीड होती है, महंगे गिफ्ट्स, पार्टी या बस एक छोटा सा थैंक यू। क्योंकि सच कहें तो माँ की जिंदगी किसी मशीन जैसी हो जाती है। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों की पसंद याद रखना, पापा की दवाई याद रखना, घर की सफाई, काम, कपड़े, फिर ऑफिस का काम, और आखिरकार रात में आकर के वो सो जाती है। लेकिन इस बीच हम सब उनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि माँ आप कैसे हो। तो आज की हमारी कहानी किसी फिल्मी माँ की नहीं है, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहाँ माँ हर दिन चुपचाप बहुत कुछ करती है। आज हम आपको दो परिवारों की कहानी सुनाएंगे। दोनों घरों में एक जैसी सुबह होती है, एक जैसी रसोई, एक जैसे लोग, एक जैसी जिम्मेदारियाँ, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था। वो तो स्टोरी जानने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो कहीं मत जाइएगा, बहुत ही स्पेशल स्टोरी आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ, और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गाने भी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो फिर कहीं मत जाइए, एंजॉय करिए इन म्यूजिकल ट्रैक्स को, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: इसी प्यारे से गाने के साथ एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और आज मदर्स डे स्पेशल में कहानी चल रही है दो परिवारों की। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर उन दो परिवारों में डिफरेंस क्या है। एक परिवार था बिल्कुल आम सा परिवार, घर में मम्मी पापा दो बच्चे और दादी। हर दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजने से पहले माँ उठ जाती थी। सबसे पहले चाय, फिर नाश्ता, बच्चों का टिफिन, पापा के ऑफिस के कपड़े, दादी की दवाई और फिर पूरे घर की जिम्मेदारी। बच्चे स्कूल चले जाते थे, पापा ऑफिस चले जाते थे, लेकिन माँ का काम जो है वो खत्म नहीं होता था। कभी गैस खत्म हो गई है, कभी बिजली का बिल, कभी किसी की पसंद का खाना, तो कभी किसी की नाराजगी। लेकिन मजेदार बात पता है क्या थी कि उस घर में सबको आदत हो चुकी थी कि माँ तो कर ही लेगी। अगर खाना अच्छा बनता तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो सब बोलने लग जाते थे कि आज खाना अच्छा नहीं बना है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि माँ तुम थक तो नहीं गई, माँ तुमने खाना खाया है, माँ थोड़ी देर आप बैठ जाओ, आराम कर लो, मैं ये सारी चीजें कर लूंगा या कर लूंगी। और धीरे धीरे पता है क्या हुआ, वही माँ बदलने लगी। वो पहले जल्दी हंस लिया करती थी, खुश हो जाया करती थी, अब धीमी सी मुस्कान के साथ चुपचाप बैठी रहती थी। पहले खुद का ध्यान रखती थी, लेकिन अब दूसरों का रखती है। उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, वो समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, उसका बीपी बढ़ने लगता है, कमजोरी बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर वही सब करती है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाती है, बस एक दिन के लिए, और उस एक दिन में पूरा घर जैसे मानो रुक जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि टिफिन कौन बनाएगा, दादी की दवाई आखिर रखी कहाँ पर है, कपड़े क्यों नहीं प्रेस हुए हैं, गैस पर दूध उबलकर क्यों गिर गया। उस दिन पहली बार उस घर को समझ आया कि माँ काम नहीं करती है, माँ पूरा घर संभालती है। माँ को सिर्फ दवाई की जरूरत नहीं थी, उसे जरूरत थी अपनापन महसूस होने की, जरूरत थी ये सुनने की कि आप जो करती हो वो बहुत कीमती है। और वहीं दूसरी तरफ है एक दूसरा परिवार, रिंकी, मोहन, जलज और सुनीता का। तो चलिए देखते हैं उनके परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय करिए ये प्यारे प्यारे गाने और सुनते रहिए रेडियो।

Dolls, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: इसी प्यार से गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.67। और कहानी चल रही है मदर्स डे स्पेशल। आज हमने एक कहानी, एक परिवार की कहानी को समझा और अब बारी है दूसरे परिवार की कहानी को समझने की, जिसमें है रिंकी, मोहन, जलज और सुनीता। जलज और सुनीता जिनके दो बच्चे है रिंकी और मोहन, वहाँ पर भी सेम वैसी की सुबह होती है, वही रसोई, वही जिम्मेदारियां, वही भाग दौड़। लेकिन वहाँ एक छोटी सी आदत थी, घर में हर कोई एक दूसरे को एक दूसरे के काम के लिए थैंक यू बोलता था। बेटा खाना खाकर बोलता था, लव यू मॉम, खाना बहुत अच्छा बना है। बेटी कभी माँ के बालों में तेल लगाती थी तो पापा कभी माँ के लिए चाय बनाते थे। संडे को सब मिलकर घर का काम करते। वहाँ माँ सिर्फ काम करने वाली इंसान नहीं थी, बल्कि वो परिवार का दिल थी। अगर वो थक जाती तो घर वाले कहते थे कि आज तुम आराम कर लो। अगर वो उदास हो जाती तो बच्चे कहते थे, क्या हुआ माँ, मैं आपकी हेल्प कर दूं। और धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें उस माँ को अंदर से स्ट्रांग बनाती गई। 60 साल की उम्र में भी वो इतनी एक्टिव, इतनी खुश और इतना हंसती खेलती मुस्कुराती थी जैसे मानो अभी भी वो बच्ची हो। क्योंकि उसे सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं मिली थी, उसे प्यार भी मिला था, उसे उसका सम्मान भी मिला था। दोनों घरों में खाना बनता था, दोनों घरों में माँ सुबह चलती उठती थी, दोनों घरों में जिम्मेदारियां एक जैसी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि एक घर में माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड माना गया और दूसरे घर में माँ को उस घर की धड़कन माना गया। और शायद यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर माँ को सिर्फ गिफ्ट और स्टेटस नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है कि कोई उन्हें भी दुलार करे, कोई उन्हें भी प्यार करे, उनके किए गए काम के लिए कोई उन्हें भी छोटा सा थैंक यू बोले, कोई उन्हें गले लगा करके लव यू माँ बोले। और यही छोटी छोटी चीजें एक सिंपल सी माँ को स्ट्रॉन्ग माँ बनाती है। किसी घर में माँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है तो किसी घर में बढ़ती उम्र के साथ वो और बच्ची हो जाती है। इसका फर्क बहुत ही सिंपल है। जिस घर में माँ को सम्मान मिलता है, जिस घर में माँ को उसकी इज्जत मिलती है, जिस घर में माँ को उसका प्यार मिलता है जो कि उसे हर घर में मिलना चाहिए, उस घर में खुशहाली ही खुशहाली होती है। तो माँ की कीमत को समझिए और उनसे बहुत सारा प्यार करिए, उनसे बातें करिए, उनको टाइम दीजिए और बहुत ही मीठी मीठी बातें करके उनको पकाइए मत, लेकिन हाँ कुछ बातें बोलकर, थैंक यू बोलकर, लव यू बोलकर उनके मन को और ज्यादा उत्साहित बनाइए, और ज्यादा एक्साइटेड बनाइए, ताकि वो और एनर्जी के साथ में अगले दिन की शुरुआत कर सके। इस मदर्स डे स्पेशल में इस कहानी को रखेंगे जारी, बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सभी माओं के लिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
3: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
2: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
1: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दांतों में ब्रश घुमाते समय जिगजैग करें, ना कि सड़क पर बाइक घुमाते समय।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: जानी ये स्विच है।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटकी सीरीज बता जय मोनिका।
2: इसी प्यार से गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है मदर्स डे स्पेशल। हमने दो परिवारों को देखा, एक ऐसा परिवार जहाँ पर सेम चीजें हो रही हैं, सेम जिम्मेदारियां हैं माँ के ऊपर, सेम सिचुएशन है, सेम अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो शायद नहीं है। माँ को एक दुलार मिलना चाहिए, माँ को एक सम्मान मिलना चाहिए, माँ को प्यार मिलना चाहिए, वो उस फैमिली में नहीं है। तो माँ जो है जल्दी बीमार हो जाती है, जल्दी बूढ़ी हो जाती है, समय के साथ और कमजोर होती चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ है एक ऐसी फैमिली जहाँ पर एक छोटी छोटी आदत, थैंक यू, लव यू और केयर करने की आदत जो है माँ को और स्ट्रांग बनाती है। तो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह की फैमिली बनना है और अपनी माँ को और स्ट्रांग बनाना है या फिर वीक, ये डिपेंड आप पर करता है। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें सच में बहुत मायने रखती हैं। और अगर आप सच में अपनी माँ को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो मत लगाइए। आज एक बार उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि माँ आप कैसी हो, एक बार किचन में उनकी मदद कीजिए, और एक बार जब वो ऑफिस से आए तो उनसे पूछिए कि आपका दिन कैसा रहा। और सबसे बड़ी बात, एक बार दिल से बोलिए थैंक यू माँ। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि माँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन सच ये है कि माँ भी इंसान होती है, उन्हें भी केयर चाहिए, उन्हें भी प्यार चाहिए और उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इस घर की सबसे खूबसूरत वजह है। और सिर्फ माँ ही नहीं, घर के पापा, दादा, दादी, हर वो इंसान जो चुपचाप परिवार के लिए खड़ा रहता है, उन्हें भी प्यार और अप्रिशिएशन की जरूरत होती है। तो आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिए, महसूस कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को और खूबसूरत बनाती हैं। तो अपनी माँ को आज सिर्फ विश मत कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वो आपकी जिंदगी में कितनी जरूरी है। क्योंकि आप माँ से भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, वो आपकी विशेज में, वो आपकी हर एक काम में आपके साथ होती है। तो इस मदर्स डे कुछ उनको स्पेशल फील कराइए, उनको भी एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है। तो अभी मेरा टाइम हो गया है आप सभी से विदा लेने का, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। तब तक एंजॉय करिए प्यारे प्यारे गानों को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कोई विश है, आप कुछ कहना चाहते हैं रेडियो के थ्रू लोगों को, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई कहानी में। और सभी माओं को मेरी तरफ से रेडियो महारानी 89.6 FM की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और एंजॉय करिए आज की बहुत ही प्यारी माँ लखनऊ की किरण द्विवेदी जी और उनकी बड़ी बहन कलावती जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 89.6 FM पर सुन रहे हैं आप पोषण की पाठशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और सही पोषण की। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो शुरुआती दौर में एक नया फेज शुरू होता है, यानी पहला खाना। ये वो टाइम होता है जब माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को सॉलिड फूड देना जरूरी माना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद सवाल ये उठता है, पहला खाना क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करें और क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेनू खुराना, जो कि आज हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और बच्चों के सही पोषण पर अपने एक एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेनू आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी क्यों नहीं होता, और अगर बात की जाए पहले खाने की, तो पहला खाना शुरू करना क्यों जरूरी होता है। एंड साथ ही अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इसका सिंपल मतलब क्या है जो हर पेरेंट आसानी से समझ सके।
1: हाँ अंजलि, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा आपने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने कंप्लीट होने पर ही क्यों स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली 6 महीने तक बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ रही हैं, प्रतिदिन उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए उसकी न्यूट्रिशनल जरूरत भी बढ़ जाती है। केवल ब्रेस्ट मिल्क इस समय काफी नहीं होता, तो 6 महीने के बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, ध्यान रखिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो हम सॉफ्ट फूड या सेमी सॉलिड फूड देते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे लिसनर्स तक ये इतनी इम्पोर्टेंट बात पहुंचाने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने क्लियर किया कि 6 महीने के बाद सिर्फ दूध नहीं बल्कि सही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध। इसलिए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेनू खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए, साथ ही ये खाना घर पर बना हो या फिर मार्केट पैक्ड फूड भी चल सकता है। अक्सर देखा गया है पेरेंट बच्चों को बिस्किट रस्क या फिर पैक्ड फूड खिला देते हैं क्योंकि वो इजी ऑप्शंस होते हैं। तो ये कितना सही है, कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए। साथ ही बात की जाए नमक और चीनी की, तो कब से देना चाहिए, कब सही समय है देने का, और अक्सर देखा गया है कई बार बच्चे खाना नहीं खाते, इस केस में पेरेंट को क्या करना चाहिए।
1: अंजलि, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो न्यू पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खाना सेमी सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, और तीसरी बात ये है खाना जो है वो कैलोरी डेंस होना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया कि खाना सेमी सॉलिड या सॉफ्ट होना चाहिए, खाना ना तो बहुत लिक्विडी हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ताकि बच्चा उसको आराम से खा सके। और जो हमने बात की कि खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर खाना घर पर बन रहा है तो आपको मालूम है कि वो सेफ है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है और बिना प्रिजर्वेटिव के है। सो बच्चे को इस समय पर सेफ और हाइजीनिक खाने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि खाना कैलोरी डेंस हो, ताकि उसकी छोटी सी भूख में उसकी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी हो सके। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे दाल अच्छे से पकाकर मैश करके देना, चावल को पकाकर उसको मैश करके खिला सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, और किसी भी अनाज का दलिया बनाकर दे सकते हैं, सब्जियां पकाकर दी जा सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप घर का बना हुआ खाना दें बच्चे को, ना कि मार्केट के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड दें। बच्चे को एक साल तक चीनी और नमक की जरूरत नहीं है। अभी वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम शुरू कर रहे हैं उसके टेस्ट से फेमिलियर हो रहा है, तो नमक और चीनी कभी कभी ओरिजिनल टेस्ट को ओवर पावर कर लेते हैं और वो असल खाने को समझ नहीं पाता है। मैं यहाँ एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगी, प्लीज क्विक फिक्सेस अवॉइड करिए। अगर बच्चा मील रिजेक्ट कर रहा है या वो रो रहा है, तो बिस्किट या पैकेज स्नैक्स देना उस मोमेंट में आपको इजी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की प्रेफरेंस वही खाना बन जाती है और वो उसकी हैबिट तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और फिर नॉर्मल खाना देना और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बजाय जो फेमिलियर फूड है, जो वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, वही खाना दीजिए। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टेक्सचर उन्हीं खानों के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस फूड की बजाय फेमिलियर खाना दीजिए, शॉर्टकट ना अपनाएं।
0: जी डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बातों से एक बात जरूर क्लियर हुई है, घर का बना सिंपल और फ्रेश खाना ही सबसे बेस्ट होता है। सो जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज बिस्किट और पैक्ड फूड को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने बच्चे का पहला खाना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखिए जो आज हमें डॉक्टर बता रहे हैं। साथ ही घर का बना खाना सबसे बेस्ट होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर के बने खाने को ही दीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए खाने की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। क्या एक ही तरह के खाने को हमेशा बच्चे को खिलाया जाए या फिर बच्चे के खाने में वैरायटी इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इसी के साथ बात की जाए अगर कंसिस्टेंसी की, तो किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खाने की, ज्यादा पतला, ज्यादा गाढ़ा या बिल्कुल पेस्ट जैसा जो बच्चा आराम से खा सके। ये कई तरह के डाउट्स हैं जो हर पेरेंट्स के मन में रहते हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर बच्चा शुरुआती दौर में खाना खाना शुरू कर रहा है तो दिन में कितनी बार खाना खिलाएं 6 से 8 महीने के बच्चे को?
1: हाँ अंजलि, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का पर्पस बस बच्चे का पेट भरना नहीं है, बल्कि उसे न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट देना है। अगर हम बेबी को बार बार एक ही तरह का खाना देते हैं, जो कि कुछ माओं को बहुत आसान लगता है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल जरूरत उस खाने से पूरी नहीं होगी। इस एज में उसको कई तरह के विटामिन्स चाहिए और आयरन और जिंक जैसे कई मिनरल्स की जरूरत है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें उसके डाइट में अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स इंक्लूड करना जरूरी होता है, जैसे हरी सब्जियां हैं, नॉर्मल सीजनल सब्जियां, दालें, लेग्यूम्स, रूट ट्यूबर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट नट्स और सीड्स, ऑफ कोर्स इन पाउडर फॉर्म एंड वेल कुक्ड फूड। 6 से 8 महीने के बच्चे को 1 टेबलस्पून दिन में 2 बार हम दे सकते हैं और धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं खाने की, जो हम खाने में वैरायटी ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी वैरायटी हम इंक्लूड करते हैं, उतना बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है अलग अलग तरह के खानों के लिए, और उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में ध्यान रखें, खाना हमेशा सिंपल और सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ही हमें बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपका बेबी अडेप्ट करता है खाने की हैबिट को, उसी तरह से क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस तरह से इनिशियल डेज में रूटीन सेट किया जाता है, तो एक बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है खुद को खाने के साथ इंट्रोड्यूस कर पाना। इसलिए कहा जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का, फिर से लौटेंगे पोषण की पाठशाला में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रिक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ये बताइए न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन या फिर गुड फैट्स। साथ ही जो पेरेंट वेजिटेरियन है वो कैसे इंश्योर करे कि प्रॉपर प्रोटीन वो अपने बच्चे को दे सके, जैसे कि दाल का पानी या फिर दाल मैश कर या फिर कोई सब्जी। किन तरह के ऑप्शंस को वो इंक्लूड कर सकते हैं बेबी के खाने में, सो दैट कि प्रॉपर प्रोटीन एक बच्चे को दिया जा सके।
1: बढ़ते हुए बच्चे के लिए हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत है, तो एक कोई पर्टिकुलर खाना लेकर हम नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हरी सब्जियां हों, सीजनल सब्जियां हों और दालें, लेग्यूम्स हैं, अंडा और दूध हम 8 महीने कंप्लीट होने पर शुरू कर सकते हैं। जो लोग केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देना बहुत आसान है। अगर हम अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स में से खाना पिक करके कॉम्बिनेशंस में बनाते हैं, जैसे आप खिचड़ी दे रहे हैं तो उसमें दाल जा रहा है और दलिया है तो उसमें दूध चला जाएगा, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है और इस समय उसे आयरन और जिंक जैसे मिनरल बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि उसकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। उसको हेल्दी फैट्स चाहिए क्योंकि इस समय पर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है बॉडी की, और प्रोटीन्स ऑफ कोर्स हमें उसकी मसल्स बन रही हैं, वो बड़ा हो रहा है, इसलिए प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करना है कि हम दाल है, लेग्यूम्स है और खिचड़ी बना रहे हैं अगर हम, तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और बादाम को पीस कर भिगो कर वो हम खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हम थोड़ा सा तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भिगो कर पीस कर पका कर ही देना है। देखिए, इस स्टेज पर बेबी को सिर्फ पेट भरना नहीं है, उसको सही तरह से ग्रो भी करना है, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। वेजिटेरियन घरों में भी ये इजीली मैनेज हो सकते हैं। दाल, खिचड़ी, सब्जी मैश, थोड़ा सा घी ऐड करके हम दे सकते हैं। अलग अलग तरह के अनाजों का हम दलिया बना सकते हैं, उसमें कुछ नट्स और सीड्स को हम भिगो कर पीस कर ऐड कर सकते हैं। इस समय जो बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत है वो पूरी हो जाती है। और एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि हमें दाल देनी है या दाल का पानी देना है। तो अगर हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं, उसकी छोटी सी भूख जो है वो दाल के पानी से भर जाएगी, लेकिन अगर हम दाल को अच्छे से पका कर मैश करके वो बच्चे को खिलाते हैं तो उन्हीं 2 चम्मच में उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है जो कि उसकी इस समय की जरूरत है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जैसे कि डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में सिर्फ बच्चे का पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बच्चे को सही खाने के साथ सही न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, जैसे कि सही तरह से आयरन देना, गुड फैट्स देना, प्रोटीन देना, ताकि एक बच्चे की सही ग्रोथ, सही डेवलपमेंट और एक सही फाउंडेशन बन सके। सो माय डियर पेरेंट्स, बस इन्हीं बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपका मोटिव सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को सही पोषण वाला खाना खिलाना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शानदार सी ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, जब बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, जहाँ बच्चे को शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किया जाता है खाने से, सो ऐसे में कई बार देखा गया है कि डाइजेशन इश्यूज, एलर्जीज और सेफ्टी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो ऐसे में हर नया खाना इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या गैप देना चाहिए, साथ ही कितने दिन का गैप रखना चाहिए अगर हम बच्चे को एक खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर बात की जाए फूड एलर्जीज की, तो फूड एलर्जी के अर्ली साइन क्या होते हैं जिनको पेरेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, घर में सफाई और हाइजीन का खाने से क्या कनेक्शन है सो दैट की बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
1: ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात। जब हम बच्चे को कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे उस खाने को फेमिलियर होने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई नया खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक रूल लेकर चलें कि एक समय पर आप एक ही खाना उसे खिलाएं और 2-3 दिन के गैप के बाद हम नया खाना उसको टेस्ट कराएं। जैसे आज हमने उसको मैश दाल दिया, तो 3rd या 4th day पर जाकर हम उसे मैश राइस देंगे, फिर 3 दिन वही देकर और 4th दिन पर हम उसको खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं या दलिया बनाकर दे सकते हैं। इससे आपको समझ आता है कि बेबी को उस फूड की टॉलरेंस है या बच्चे को भी उस खाने का टेस्ट समझ में आता है। खाना बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो उसे डेफिनेटली उससे रिएक्शन होगा। अब उसके सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी या आंखों से पानी बह रहा है बच्चे के, कभी कभी स्किन पर रैश हो जाता है या बच्चा वॉमिटिंग्स करता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे के लिप्स में स्वेलिंग हो सकती है या फेस पर स्वेलिंग हो सकती है। ये सब साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है। तो इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दें और बच्चे को डॉक्टर से मिलवाएं। बच्चा इस समय ग्रो कर रहा है, वो नया खाना एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है इस टाइम पर, तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे के आसपास और खाना खिलाने के वक्त भी हम सफाई का बहुत ध्यान रखें। खाना बनाते समय और उसको खिलाते समय हमारे हाथ साफ हों, बर्तन साफ हों, घर का ताज़ा बना हुआ खाना उसको दें और बॉटल फीड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में। सो जहाँ तक हो सके बॉटल फीड ना दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें देने के लिए। डॉक्टर ने हमें ये बताया एक छोटी सी लापरवाही भी बेबी की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हाइजीन और पेशेंस दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर पेरेंट्स, इन सभी छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंशली और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेनू खुराना, जहां आज हम जान रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इस दौरान फोर्स फीडिंग क्यों हार्मफुल हो सकती है एक बच्चे के लिए, साथ ही जितने भी वर्किंग पेरेंट आज हमें सुन रहे हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे मैनेज की जा सकती है, उनके लिए कुछ ऐसे इजी ऑप्शंस जो आप बताना चाहें।
1: फोर्स फीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है नॉर्मली हर घर में ही, और पेरेंट्स को बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि वो बच्चे को अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना चाहते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं है और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं तो बच्चा खाने को प्रेशर के साथ एसोसिएट कर लेता है, धीरे धीरे खाने को डिसलाइक करना शुरू कर देता है, उसे एज ए पनिशमेंट समझने लगता है और खाने से बचना चाहता है। इसलिए बेबी के हंगर क्यूज को समझें, इसे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं, माने आप देखें कब वो खाना मांग रहा है या उसको कितनी भूख है और कब वो खाना नहीं खाना चाहता। तो अगर हम बात करें वर्किंग मदर्स की, शुरू शुरू में उनको ये बहुत टफ लगता है, लेकिन काउंसलिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ बहुत इजी बनाया जा सकता है इसको। इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके पहले से रख लेते हैं, और या फिर फैमिली फूड जो हम कुक कर रहे हैं उसमें एक या दो चीजें हम ऐसी बनाते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। सिंपल घर का खाना हम बच्चे को दे सकते हैं आराम से। प्लानिंग में जैसे हमें अगर मालूम है कि हमें दिन में उसको दो फीड देने हैं, या जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो फीड बढ़ता जाएगा, तो वो छोटे छोटे पोर्शन आप प्रेप करके और कुक करके रख सकते हैं, और जो भी केयर गिवर है बच्चे का उसको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है इसमें।
0: सो डॉक्टर ने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ फीडिंग करनी है, और जितनी भी वर्किंग मदर आज हमें सुन रही है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप बैलेंस बना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज डॉक्टर ने हमें बताए हैं, इन सभी ट्रिक्स एंड टिप्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को इजी बनाइएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेकर। सो डॉक्टर, अगर आप एक लाइन में पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा जो 6 महीने के बाद अपने बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं?
1: अंजलि, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन नहीं मानती, ये एक बिहेवियरल ट्रांजिशन भी है। सो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस फेज में बच्चा टेस्ट और टेक्सचर से फेमिलियर होता है फूड के, वो अपनी भूख को और फुलनेस को समझता है, ईटिंग एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए फीडिंग को सिर्फ कितना खाया से जज नहीं करना है, हमें उस प्रोसेस पर फोकस करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग कराना है, क्यों समझना है कि बच्चा खाना मांग रहा है या अब उसको भूख नहीं है। बच्चे को कभी भी ओवर फीड ना कराएं और ना ही उसकी भूख को नेग्लेक्ट करें। प्रेशर फीडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। खाते समय बच्चे के आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें, उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, टीवी फोन या बहुत ज्यादा शोर आसपास ना हो, ताकि वो अपने खाने को एंजॉय कर सके। बेबी को खाना एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे खाना वो अपने हाथों से खाएगा तो वो उसके टेक्सचर को समझेगा, अपनी भूख को समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी बच्चे को उसके सिबलिंग से या और बच्चों से कंपेयर ना करें। मैंने प्रैक्टिस में रिपीटेडली देखा है, जहाँ फीडिंग प्रेशर कम होता है वहाँ लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स बेटर होती हैं बच्चों के। सो हमें ध्यान रखना है कि फीडिंग न्यूट्रिशन प्रोसेस के साथ साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की फाउंडेशन भी है, जो असल में उसकी एडल्ट लाइफ की हेल्थ की भी बहुत बड़ी फाउंडेशन है। सो आखिर में मैं कहना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ खाना शुरू करना मत समझिए। ये वो दौर है जहां बच्चा टेस्ट के साथ साथ ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा होता है और भी बहुत नई चीजें सीख रहा होता है। अगर ये फेज पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल किया जाए तो फीडिंग स्ट्रगल नहीं होती बल्कि हेल्थी रूटीन बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बहुत ही खूबसूरत और सिंपल मैसेज डॉक्टर ने आज हमें दिया है, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को याद रखना चाहिए। सो माय डियर न्यू पेरेंट्स, अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं, सो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल और रियश्योरिंग रहा होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का पहला खाना उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक बहुत जरूरी शुरुआत होती है, और आज हमने जाना कि सही समय पर सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना बच्चे के फ्यूचर हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणु खुराना, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और इतनी सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहां से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड पोषण की पाठशाला में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पांडे, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया,
0: ट्यूबलाइट साले, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: हर कहानी के पीछे होती है एक जर्नी और हर जर्नी में होता है एक विजन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मोहन अरोड़ा, जो एक टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने क्रिएटिव प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू ब्रांड्स और आइडियाज को एक नई पहचान देते हैं। वेलकम सर।
1: थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास मुलाकात। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने मोहन अरोड़ा व्लॉग्स की शुरुआत कब और कैसे की? क्या व्लॉगिंग हमेशा से ही आपका प्लान था?
1: नहीं मैम, व्लॉगिंग का हमेशा से प्लान नहीं था। पहले तो मैं टिकटॉक पे करता था, लाइक सॉन्ग लगाने उस तरीके से, मतलब गाने वाने टाइप की।
0: जी।
1: बट फिर धीरे धीरे जैसे मैं 10th और 12th में, मेरे को आइडिया आया कि इस तरीके की व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब 12th में पास आउट हुआ था ना, तो 6 मंथ का गैप आता है
0: जी
1: 12th और कॉलेज में।
0: जी।
1: तब मैं ये रील स्क्रॉल करता था और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, मतलब वीडियोस देखता था लॉन्ग वाली, तो वहाँ से मेरे को काफी मोटिवेशन मिली और कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है
0: जी
1: और इस तरीके की व्लॉगिंग बना रहे हैं। तो वहीं से मेरे को आइडिया आया कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। बस फिर मैंने कंटिन्यू किया और साथ में कुछ ना कुछ अलग ऐड किया। उनको मैं देखता था कि हाँ इस तरीके की व्लॉगिंग बना रहे, बट मैंने फिर कुछ ना कुछ अलग ऐड किया। यूट्यूब पे बनाई लाइफस्टाइल व्लॉग्स, 365 डेज का चैलेंज भी लिया था मैंने
0: जी
1: 2022 में। देन उसके साथ साथ मैंने फिर फूड व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी लॉन्ग वीडियोस में यूट्यूब पे
0: जी।
1: फिर मेरे को एक दो कमेंट्स आए कि भाई आप इंस्टाग्राम पे डालो, रील डालो, शॉर्ट का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। तब मैंने वहाँ से कट करके उन्हीं वीडियोस को इंस्टाग्राम पे डाल दी।
0: ओके।
1: और लगभग 1 से 2 मंथ तो मैंने इसी तरीके से कंटिन्यू किया
0: जी।
1: फिर अचानक से एक वीडियो वायरल हो गई बहुत ज्यादा
0: जी,
1: वो लगभग 750,000 ऐसी गई थी, 7,50,000। और फिर उसके बाद वहीं से और मोटिवेशन आया, वहां से क्या कहते हैं एक दो और शॉप्स वाले हैं
0: ओके,
1: उनके कॉल आए कि हमारी शॉप के आके प्रमोशन करो।
0: ओके।
1: तो वो जब किया तो 1 मिलियन प्लस व्यूज वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा और धीरे धीरे कंटिन्यू किया फूड व्लॉगिंग में 1 मंथ तक। फिर उसके बाद फर्नीचर शॉप हो गई, क्लोथ शॉप हो गई, उनके भी आने लगे कि हमारी शॉप पे कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को यूनिक लगी, अलग लगी, तो मेरे भाई ने कहा कि ये भी कर सकता है फूड व्लॉगिंग, क्योंकि कंटिन्यू कर रहा है
0: जी।
1: उसके साथ साथ फूड व्लॉगिंग के साथ साथ ये भी चीज कंटिन्यू करी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो फर्नीचर वाली चीज मेरे को लगा नहीं था कि ये चल जाएगी, वो भी चलने लग गई, क्लोथ्स की भी वीडियो चलने लग गई। बस फिर इसको कंटिन्यू रखा और बहुत सारे अप एंड डाउन आए, आगे आज तक कंटिन्यू चल रहा है।
0: सर, शुरुआत में जब व्यूज कम आते थे तब आपने खुद को मोटिवेट कैसे करा?
1: मोटिवेट मैंने ऐसा करा कि जब व्यूज कम आए और ज्यादा आए, ये मेरे को उससे फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है
0: जी।
1: मैं, मेरा जो काम है वो डेली ये है कि शूट करना, एडिट करना और अपलोड करना
0: जी।
1: ये जो देखने वाला है ना कि अप एंड डाउन ये है, ये मैं बहुत ज्यादा कम देखता हूँ, बहुत कम
0: जी।
1: बट हाँ, कभी अगर ऐसे डिमोटिवेट भी होता तो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है फुल कि आप इस चीज को कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, आगे तक बेनिफिट मिल जाएगा, उनको सब पता है इस चीज का
0: जी।
1: तो वो ही मोटिवेट करते रहते हैं, मेन तो मोटिवेशन मेरे को वहीं से आई है।
0: और एक 10 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए कितने घंटे की मेहनत होती है इसके पीछे, मतलब एडिटिंग से लेके शूट तक?
1: मैम 10 मिनट का तो मैं यूट्यूब पे जब बनाता था उसमें ये मान लो कम से कम पूरा दिन तो निकल ही जाता, मतलब 7-8 घंटे
0: जी।
1: और उसी में से कट करके वीडियो 10 मिनट तक की लानी पड़ती है
0: जी।
1: वो ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग।
0: ओके। मोहन अरोड़ा जी के साथ हम और भी बातें करेंगे, लेकिन वक्त हो गया अभी छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है सुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
4: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहन अरोड़ा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंस्टाग्राम रील्स वर्सेस यूट्यूब ब्लॉग्स, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा चैलेंजिंग लगता है और क्यों?
1: मैम, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरे को यूट्यूब का लगता है, क्योंकि जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था यूट्यूब
0: जी,
1: तब से मैंने 2 साल लगातार वीडियोस डाली और इतनी बड़ी बड़ी, मतलब 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस डाली
0: जी,
1: कभी कभार तो 30-30 मिनट की भी वीडियोस डाली हैं। और उसको बनाने के लिए मेरे को 8-9 घंटे लगते थे, फिर उसको 8-9 घंटे बनाने के बाद 10 मिनट पे लेके आना पड़ता था
0: जी,
1: फिर वो जब मैं अपलोड करता था व्यूज आते थे सिर्फ और सिर्फ 500, 1000, 800 इस तरीके के, बस 1500-2000 यहाँ तक। बट फिर मैंने इसको इंस्टा पे डाला कट करके सिर्फ और सिर्फ 40-50 सेकंड की रील्स
0: जी,
1: उसमें मेरे को लगभग 15-20 दिन, और मतलब जो कंटिन्यू मैंने इस तरीके की ब्लॉगिंग करी जिसमें से मैं वायरल हो रहा था 15-20 दिन
0: जी,
1: और उससे पहले 3 मंथ्स तो मैंने वैसे ही डाली, मतलब कट करके यूट्यूब की वीडियोस
0: जी।
1: वो तो मैम ये मान लो इंस्टाग्राम सबसे मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें 40-50 सेकंड की रील बनानी है, टाइम भी इतना नहीं लगता, 1.5-2 घंटे ही लगते सिर्फ और सिर्फ
0: जी,
1: और इसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ मेरे को व्यूज का भी, और भी जो कह सकते कि मनी का भी।
0: ओके, क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट को मना करा हो, भले उसके पीछे आपको अच्छी डील मिल रही हो बट स्टिल आपको वो सही नहीं लगा और आपने उसको मना कर दिया?
1: हाँ मैम, काफी हुआ ऐसे, तो गेमिंग का भी हो चुका है कि गेमिंग का भी आया मेरे पे कि इस तरीके की करनी है
0: जी,
1: बट मुझे लगा वो बोट है, फेक है, इस तरीके की मैंने उसको प्रमोट ही नहीं किया
0: जी,
1: और मुझे भी लगा कि मेरी ऑडियंस के लिए ये चीज अच्छी नहीं है
0: जी,
1: सो अभी तो ये रोक रखा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले टाइम में भी शायद इसे कहीं प्रमोट करूँ
0: जी। बिल्कुल, आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो अपने व्लॉग्स को दूसरों से अलग बनाने के लिए आप क्या एक्सपेक्टर यूज करते हैं?
1: मैम, कॉम्पिटिशन में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को अपने ब्लॉग्स बनाने हैं
0: जी,
1: किसी और को नहीं देखना, और उसमें यूनिक चीज एड ऑन डेली ही करते रहना है
0: जी।
1: एक चीज पे मैं टिका नहीं रहता कि इसी पे, मतलब यही चीज मैं बनाता हूँ सेम
0: जी,
1: मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ ताकि और भी अच्छे ब्लॉग्स मेरे बनते जाएं
0: जी। ओके, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन अरोड़ा सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि शूटिंग के वक्त कोई ऐसी फनी या कोई डिफरेंट इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो हम सभी ने कैमरे पर नहीं देखा।
1: मैं वैसे बहुत बार हो चुका है और एक से दो इंसिडेंट मैं ऐसे बताता हूँ जो आप लोगों को भी कह सकते हैं हंसी आएगी या फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये गलत हो गया।
0: जी
1: मैं बता दूं, जैसे कि मैं एक से दो कैफे, जैसे एक रोमियो कैफे है वहाँ भी गया था
0: जी।
1: तो वहाँ मैंने लगभग 1.5 घंटा लगाया था मतलब शूट करने में प्रॉपर
0: जी।
1: और खाना उन्होंने पूरा रेडी किया, बट जैसे ही वो शेक लेके आए मेरे लिए कांच के उसमें ग्लास में, वो जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा और इस तरीके की वीडियो बनाने लग गया, वो गलती से मेरे हाथ से स्लिप हो गया
0: जी।
1: और जब वो टूटा सारे लोग मुझे देख रहे थे जितने भी वहां पे बैठे हुए थे, वो चीज मेरे को देख के अंदर से तो हंसी आ रही थी बट बाहर से थोड़ा नर्वस भी था कि यार सब लोग देख रहे हैं, थोड़ी शर्म सी आ रही है। बट हाँ ये है कि कैफे वालों ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और जो भी है मतलब खाना भी मैंने एंजॉय करा, काफी अच्छा था।
0: ओके, क्या हम आने वाले वक्त में मोहन अरोड़ा को दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर व्लॉगिंग करते हुए देख सकते हैं?
1: हाँ जी मैम, जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा अभी मोटिव है, पहले तो मैंने फरीदाबाद का था
0: जी
1: कि मेरे को पूरे फरीदाबाद में इस तरीके से वीडियोस बनानी है। और बहुत लोग जानते भी हैं कि मैंने लगभग सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ
0: जी
1: फरीदाबाद में जितनी भी शॉप्स हैं
0: जी।
1: बट हाँ, अब जो मेरा मोटिव है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और इससे बाहर भी जाना है।
0: हाँ जी,
1: तो नेशनल लेवल पे तो हाँ चलो, मैं मेरे को जो लगता है कि मैं हो जाऊंगा मतलब इस तरीके से कर लूंगा मैं लगभग 6 से 7 महीने में पूरा इंडिया में मतलब कवर करना है। बट हाँ, इंटरनेशनल में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1.5 से 2 साल, ये भी मेरा मोटिव है
0: जी,
1: जरूर इसे पूरा करेंगे।
0: ओके, हमें पता है कि आपको खाना बहुत पसंद है क्योंकि स्टार्टिंग की आपकी वीडियोस ही फूड रिलेटेड थी सारी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हो, वहाँ का खाना आपको पसंद ना आया हो बट स्टिल आपको वीडियो प्रमोट करने के लिए वो खाना पड़ा?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत जगह होता है और मैं रिव्यू भी देके आता हूँ, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी तो हाँ मैं वहाँ बोल भी देता हूँ कि इस तरीके का आप चेंजेस करो, ये करो, वो करो, तो वो कर भी देते हैं मैम। और मुझे ये चीज देख के काफी अच्छा लगता है। जगह का मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी जगह ऐसी है
0: जी, जी, जी।
1: बट हाँ, मैं रिव्यू दे के आया और उन्होंने चेंजेस भी कर लिया, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा।
0: कहीं ऐसा रिव्यू दिया है कि ये खाना ही हटवा दो?
1: नहीं नहीं मैम, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है जब प्रमोशन करते हैं तो ये चीज नहीं कर सकते, और क्योंकि जो सामने वाला है उसको भी बहुत बुरा लगेगा मैम
0: जी। सर, जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पे?
1: मैं एक चीज बता दूं, मैंने जब यूट्यूब पे किया था ब्लॉगिंग का
0: जी,
1: तब तो उन्हें क्योंकि मैं आउटडोर बनाता था सारे ब्लॉग्स
0: जी,
1: तो उन्हें इतना वो पता ही नहीं था कि ये इस तरीके के यूट्यूब पे बना रहा है या ये कुछ है। बट जब मैंने इंस्टा पे बनाई, क्योंकि मैं वॉइस ओवर रील्स बनाता हूँ
0: जी,
1: तो जब घर में स्क्रिप्ट लिख के प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है तो पहले दिन तो वो भी हंसते थे कि ये क्या कर रहा है। बट हाँ, जब उन्हें देखा कि हाँ चलो अच्छा है, ये जब डेली कंटिन्यू रहेगी हमारे घर में और ग्रोथ भी हो रही है इसकी अच्छी, तो उन्हें काफी सपोर्ट करा और ये देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा और अंदर से मोटिवेशन आई। सो डेली आज से लगभग 2 साल तो हो ही चुके हैं इंस्टाग्राम पे।
0: ओके, वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

देखते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहन अरोड़ा। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप कॉन्टेंट क्रिएशन के साथ साथ कोई जॉब भी मैनेज कर रहे हैं या यही आपका प्राइमरी फोकस है?
1: मैम, जॉब मैंने 2 साल करी है जी। और जॉब भी मैं अगर बताना चाहूँ तो प्रॉपर जिसे कहते हैं वर्करी
0: जी,
1: वो करी है मैंने। 10 से 12 हजार मेरी सैलरी थी पर मंथ।
0: ओके।
1: और वहीं से मेरे को ये आया था थॉट कि मेरे को यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है।
0: ओके।
1: और फिर मैंने YouTube पे तो 2 साल बनाए, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने Instagram पे करा तो वहां से मेरे को जो प्रॉफिट हुआ जॉब से ज्यादा उसमें होने लग गया था
0: जी।
1: तो वहीं से फिर मैंने घर वालों को कहा कि इस तरीके से मेरे को जॉब छोड़नी है।
0: okay.
1: मम्मी का तो रिएक्शन यही था कि क्यों छोड़नी है, बंदी बंदाई सैलरी आ रही है जो, क्योंकि देखो पुराने जो पेरेंट्स है उनका यही थॉट होता है
0: जी।
1: तो बस फिर पापा ने तो मम्मी को कहा कि छोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इस चीज में बेस्ट कर लेगा। और भाइयों का भी सपोर्ट था, भाइयों ने मम्मी को बनाया बड़ी मुश्किल से।
0: ओके।
1: बस फिर मैंने छोड़ दी जॉब जब मेरे 8000 फॉलोअर्स थे।
0: ओके, नाइस। तो आपको कैसे समझ आया कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है?
1: मैम, मेरे को देखो, मैंने जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और उस समय जो मेरी रील पे बार बार फीड में आ रही थी वो फूड ब्लॉगिंग ही आ रही थी
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि जैसे मेरे को पसंद आ रही है और लोगों को भी आएगी पसंद
0: जी।
1: मैंने वो बनाई और अलग तरीके से बनाई जो कि देख के मुझे तो अच्छा ही लगा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी चेक करवाई कि ये देखो एक बार है, सही है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये अपलोड करी
0: जी।
1: और जब ये अपलोड करी तो ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा। वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख 8 लाख ऐसी भी जान लग गई थी
0: जी।
1: तो वो चीज देख के मुझे अच्छा लगा और जितनी भी ऑडियंस है सब कनेक्ट होने लग गए फिर धीरे धीरे।
0: ओके। जब आपका पहली बार कॉन्टेंट वायरल हुआ था, आप उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
1: मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे 2019 में ना एक रील बनाई थी मैंने, टिकटॉक पे बनाई थी वीडियो
0: जी।
1: तो उसपे 10,000 व्यूज गए थे
0: जी।
1: उसे देख के मैं क्या, मेरे भाई खुश हो गया, मैं उन्हें दिखाने लग गया कि भाई 10,000 व्यूज गए। फिर जब मैंने देखा कि भाई इस पे तो 7 लाख गए अब जब मैंने ये वाली करी रील, तो इस पे अंदर से और अच्छा लगा और बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा उस दिन
0: जी।
1: बस फिर आगे कंटिन्यू रहा इसका आज तक।
0: और जो कंटेंट क्रिएशन को एक फुल टाइम जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे?
1: मैं तो कहूंगा कि बेस्ट चीज है अगर आप फुल टाइम देख रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, बेस आपको बनाना पड़ेगा थ्रू जॉब।
0: ओके।
1: या कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस है उसके थ्रू आप कर सकते हो
0: जी।
1: अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो साथ साथ ये भी चीज करते रहो, या जॉब कर रहे हो तो साथ साथ आप ये भी करते रहो।
0: ओके।
1: और जब आपको लगे कि जॉब से ज्यादा या बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट इसमें हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यू रखो फुल डे के लिए।
0: ओके। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि मेरा तो सपना था कि रेडियो में आऊं, इस तरीके से मेरी भी आवाज आए जब मैं अपनी गाड़ी में सुनता था
0: जी।
1: तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, अपना टाइम और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलती हूँ आपसे अगले वीकेंड एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियरा, किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है, तो आज से ही सुनो पर जज मत।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
5: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
6: चाय की चुस्की हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: काफी स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। सोच होती है, इंटेंशन होता है, पर उसे रियलिटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने समाज सेवा को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक लगातार कमिटमेंट के रूप में जिया है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर राजकुमार अग्रवाल जी के बारे में, जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के प्रोजेक्ट चेयरमैन है और साथ ही साथ भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय सेवा संयोजक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: तो सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये संस्था जो है वो कितनी पुरानी है।
2: धन्यवाद। ये जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारी एक संस्था है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद 1963 से दिल्ली से शुरू हुआ
1: जी।
2: आज हम 2026 में है तो लगभग 63 साल से भारत विकास परिषद इस तरह के सेवा के काम कर रहा है। और साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बना हुआ है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि 2022 में हमने शुरू किया
1: जी।
2: और इस तरह के पूरे देश में 12 हॉस्पिटल और चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में एक हमारा बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, एक हमारा चंडीगढ़ में चल रहा है, एक हमारा कोटा में चल रहा है, एक हमारा लुधियाना में चल रहा है, एक हमारा पटना में चल रहा है। तो इस तरह कुल मिला के 12 इस तरह के हॉस्पिटल पूरे देश में चल रहे हैं जो कि पूरे देश की जनता को समर्पित है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कहते हैं कि हर चैरिटेबल काम जो है वो एक सोच के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। क्या ऐसा कोई वक्त था जब आपकी सोच बिल्कुल बदल गई हो अपने ट्रस्ट को लेकर?
1: देखिए, ऐसा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो हॉस्पिटल बना है, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था। हम भारत विकास परिषद के जो फरीदाबाद में जो हमारी ब्रांच है उसके कार्यकर्ताओं का एक सपना था।
0: हाँ जी।
1: जो 30 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कभी ऐसा समय आएगा तो हम फरीदाबाद में एक सेवा के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें सभी की मेहनत लगी हुई है। और सोचा तो था कि हम बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि जैसा सोचा था उससे ज्यादा और उससे जल्दी हम लोगों ने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया।
0: जी जी।
1: ये बहुत अच्छी बात है। इसके लगता है मुझे फरीदाबाद के जो लोग हैं उनका प्यार है जिसकी बदौलत आज हम इतना अच्छा काम करते हैं।
0: जी सर, मैं टीम के बारे में जानना चाहूंगी, कितनी टीम है आपके पास?
1: जो हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट चला रहा है, उसका नाम भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है। इसमें लगभग 100 मेंबर्स है। 100 मेंबर्स में मैं कह सकता हूँ जो मौजूद लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, वो आज हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम कहीं भी इस हॉस्पिटल में चैरिटेबल वर्ड यूज नहीं करते हैं।
0: ओके।
1: सिंस ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट ही है, पर हम उसको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बोलते हैं।
0: ओके।
1: कई लोगों के मिथ होता है चैरिटेबल होगा तो कैसा होगा, कैसे डॉक्टर होंगे, सफाई होगी, सुविधाएं होंगी, नहीं होंगी। तो हमने एक प्रयास किया है, जैसे मैंने कहा हमारे 100 जो हमारे मेंबर है उन्होंने मिलकर एक सपना देखा था कि ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे गरीब से गरीब इंसान हमारे हॉस्पिटल में आके उसको ये लगे कि हम 5-star फैसिलिटी ले रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और उसी को सोच को बड़ा करते हुए ये हॉस्पिटल खड़ा हुआ है।
0: जी।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं?
1: देखिए ये अगर मैं सुविधा की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल में हमने डायलिसिस शुरू किया। आज आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है उसके लिए डायलिसिस लोगों को कराना पड़ता है। अब डायलिसिस सेंटर 20 बेड का हमारे हॉस्पिटल में है, जिसमें हम लगभग 700 से ज्यादा पेशेंट को हर महीने बहुत ही कम रेट पे हम डायलिसिस करते हैं। और हमारे यहाँ पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मेमोग्राफी मशीन, जो महिलाओं के लिए, हमको सबको पता है जिस तरह कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, तो हर महिला को 40 साल के बाद वो टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिससे कि हम कैंसर की बीमारी से हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास है, हार्ट सेंटर हमारे पास है जिसमें इको, टीएमटी, हॉल्टर, ईसीजी है, हमारा अपना पैथ लैब है जिसमें हम सब तरह के टेस्ट करते हैं, हमारे पास सब तरह की ओपीडीज की फैसिलिटीज है, हमारे पास सभी तरह के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट भी हम अपने हॉस्पिटल में कर पाते हैं, गायनी के प्रोसीजर्स है, ऑर्थो के सारे प्रोसीजर्स है, इवन कैंसर के जो कीमो के जो पेशेंट आते हैं वो भी हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। अभी हमने पिछले 6 महीने पहले इस हॉस्पिटल में, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ा लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ती गई,
0: बिल्कुल,
1: उनको लगा कि अभी हॉस्पिटल ठीक काम कर रहा है तो यहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए।
0: हाँ जी।
1: तो हमने यहाँ पे आईसीयू बनाया 7 बेड का, 50 बेड का आईपीडी जनरल वार्ड बनाया, फिर हमें लगा कि महिलाओं के लिए जो डिलीवरीज होती हैं वो भी एक अच्छा बनाया जाए, एक हाई स्टैंडर्ड का बनाया जाए, तो हमने डिलीवरी के लिए मैटरनिटी बनाया, एनआईसीयू बनाया, तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज को लेकर ये हॉस्पिटल धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। बेसिक फैसिलिटीज में जैसे हम फार्मेसी शॉप चलाते हैं, बहुत कम रेट में, मतलब कोशिश करते हैं कि जो दवाइयाँ हम खरीद रहे हैं उससे सिर्फ

0: इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ऐसा है जो गरीब लोग जो बीपीएल परिवार है उनको कार्ड इशू होता है, उनका इलाज बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिस दिन से हमने आयुष्मान लिया, हमने पूरे फरीदाबाद के लोगों को कहा है कि अब आयुष्मान के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में आप आइए, आयुष्मान अगर आप कार्ड आपके पास है तो सारी फैसिलिटीज हम आयुष्मान के माध्यम से लोगों को हम यहाँ पे दे रहे हैं।
1: जी जी, क्या बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: साथ अपनी वैल्यूज को बनाए भी रखते हैं, दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं?
1: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, दो बातें हैं। एक है फाइनेंस को लेकर। देखिए फाइनेंस फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद का शुक्रगुजार हूँ, फरीदाबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। फरीदाबाद के जो बड़े लोग जिनका मैंने नाम लिया है, उन्होंने हमें तन मन धन से सहयोग किया
0: जी।
1: ये हॉस्पिटल डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद का तो है, मैं हमेशा कहता हूँ ये हॉस्पिटल फरीदाबाद के लोगों का है। जिस तरह फरीदाबाद के लोगों ने दिल खोल के हमारे को पैसे में मदद करी है, तभी हम 3 साल में हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फरीदाबाद के सभी लोगों का। फाइनेंस का प्रेशर तो रहता है, पर अच्छे काम कर रहे हैं तो सारे काम हो जाते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आपको पूरे फरीदाबाद के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है
1: 100%।
0: सर क्या आपको लगता है कभी ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ा जहां समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत है, और आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया?
1: जैसे मैंने कहा कि ये मैं अकेला का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हमारी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है
0: जी।
1: तो जब भी हमें ऐसा लगता है, ऐसी समय ऐसा कोई चुनौती ऐसा कोई चैलेंजेस आते हैं, तो पूरी टीम बैठती है, बातचीत करते हैं। पर मैंने एक चीज अच्छी है, जब से इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया है, समस्याएं तो आई है, पर जितनी समस्या आई है उससे जल्दी समस्या का समाधान हुआ है। तो मैं इसका पूरा श्रेय जो है मेरी टीम को देता हूँ, जिन्होंने सूझबूझ से इसका काम बहुत बखूबी रूप से इस प्रोजेक्ट को चलाया है।
0: जी जी, अब आप बार बार टीम की बात कर रहे हैं, बिकॉज वॉलंटियर्स का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उन्हें मैनेज करना इजी नहीं होता। ऐसा क्या है जो लोग इस बारे में समझ नहीं पाते?
1: देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका काम अच्छा होता है, जब लोग आपको काम करते हुए देखते हैं
0: जी,
1: और उस काम से आपको खुशी मिलती है या उस काम से संतुष्टि मिलती है, तो वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है
0: जी।
1: अगर मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आ रहा है
0: जी,
1: और मैं सिर्फ 200 रुपए में ओपीडी में उसका अच्छा इलाज कर पा रहा हूँ, जब वो बाहर निकलता है हंसते हुए निकलता है, तो मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं का मन खुश हो जाता है कि चलो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सोच से लेकर हमने इस हॉस्पिटल को बनाया था, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती है, पर मुझे लग रहा है कि हाथ पकड़ने वाले लोग ज्यादा है हमारे, साथ देने वाले लोग ज्यादा है।
0: अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में, बिकॉज लोग इसके बारे में बात करते हैं पर उसको फॉलो करना उतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि लोग सच में आप पर ट्रस्ट करें, सिर्फ कागज पर नहीं?
1: जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप कहीं जाते हैं, आप वहाँ की सुविधाओं को देखते हैं। सपोज कोई भी आदमी, कोई पेशेंट हमारे यहाँ आता है, वो उसको किसी से लेने देना नहीं होता, वो अपने काम से आता है। उसको लगता है मैं आया यहाँ पे, मैंने पर्ची कटवाई 200 रुपये की, मैं ओपीडी के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बहुत कम पैसे में मेरा टेस्ट कराया, जितनी ज़रूरत है उतना ही टेस्ट कराया, और मैं 2-3 दिन में जितना उसकी परेशानी वो मैं ठीक हो गया। तो उसका भरोसा, उसका विश्वास हम पे बनता है
0: जी।
1: उस भरोसे विश्वास से जब बनता है तो वो 10 को कहता है कि मैं वहाँ गया था और मैं 200 रुपये में मैंने अपना इलाज कराया और मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा हमारे लिए रेफरेंस है। मतलब कहते ना, जब किसी कोई व्यक्ति अपने मुंह से 10 जगह बढ़ाई करे तो उससे लगता है कि वो संतुष्ट है। अगर वही व्यक्ति अगर 10 जगह किसी संस्था की बुराई करे तो लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है
0: जी।
1: तो हम तो ये मानते हैं जितने पेशेंट आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं।
0: क्या बात,
1: उन्हीं की बदौलत ये हॉस्पिटल आज हम महीने में लगभग 7,000 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, इन अ मंथ 7,000 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं
0: जी।
1: हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था। तो सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू जिन लोगों ने हमें ट्रस्ट किया, उनका धन्यवाद करता हूँ।

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर

0: सर, कुछ जो आपके वहाँ पेशेंट आते हैं उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आज भी आपको याद हैं, जिनके बारे में आज आप बात करना चाहें, तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी।
1: देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, अनगिनत अनुभव है। मतलब मैं बता नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे आँखों का काम करते हैं, मैंने हमारे यहाँ कैटरेक्ट की सर्जरी होती है,
0: okay.
1: तो अभी तक हम लोगों ने 2400 आँखों के ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से 650 ऑपरेशन हमने निःशुल्क किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया।
0: okay.
1: हमने आज भी अपने हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बोला हुआ है कि कोई पेशेंट अगर आता है और उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो वहाँ से वो वापस नहीं जाएगा, उसका आँखों का ऑपरेशन करके ही भेजेंगे।
0: क्या बात।
1: तो ये हॉस्पिटल, मैं बार बार कहता हूँ, ये सेवा केंद्र है। लोग उसको हॉस्पिटल बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता तो हम जितना हमसे हो सकता है
0: उससे ज्यादा किया जाए,
1: ज्यादा करने का प्रयास करते हैं।
0: जी जी।
1: बहुत, जैसे अभी इस वर्ष हम लोगों ने एक फरीदाबाद के लिए हमने एक टारगेट लिया है कि हम 2026-27 में 500 लोगों का आंखों के ऑपरेशन फ्री करेंगे।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है आपका बहुत टाइम लगेगा। तो अच्छे अनुभव है
0: जी जी,
1: पर साथ साथ हम प्रयास और कर रहे हैं कि हम अपनी सेवाओं को और बेहतर करें।
0: हाँ जी, क्या बात है। सर, क्या आपने किसी फंडिंग या पार्टनरशिप को मना किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट था?
1: हमारा सीधा ये मानना है कि आज बहुत सारे लोग हमें फाइनेंशियल ऑफर करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम का ये मानना है, पैसे तब लेने चाहिए जब आपकी आवश्यकता हो। अगर हमें आज जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। जब जरूरत ही हम लोगों के पास गए, लोगों ने हमें दिया। तो बहुत सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है, और मुझे लगता है आज हमारा काम पैसे से नहीं रुक रहा, पर द सेम टाइम, क्योंकि देखिए ये हॉस्पिटल लंबे समय तक चल रहा है
0: जी,
1: तो पैसा लोगों से मांग कर नहीं चलाना, हमने अपनी सुविधाओं को बेहतर करना है। जो लोग आ रहे हैं उनका अच्छी तरह से इलाज हो जाए, उनके दिए हुए जो फीस है उससे हमारा हॉस्पिटल चले।
0: क्या बात।
1: ना कि हम लोगों से मांग के चलाए
0: जी।
1: मैंने आपको पहले कहा है कि फरीदाबाद के लोगों का जितना सपोर्ट मिला है वो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता
0: जी। क्या बात है। सर, कहते हैं कि हर कोई इंसान जो चल रहा है उसकी एक मंजिल तय होती है। जो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, उसकी मंजिल क्या है, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं कि आप इन क्षेत्रों में भी बदलाव करें?
1: देखिए, नर सेवा नारायण सेवा आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा जितनी इस हॉस्पिटल में हमारी स्पेस है, जितना हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद इस हॉस्पिटल में जगह की कमी पड़ेगी। बट क्योंकि हम लोगों की निगाहें हैं
0: और
1: लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं भी हैं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आपको कैंसर पे काम करना चाहिए, और कैंसर अभी ऐसा मतलब घातक बीमारी हो गया है कि हर दूसरे घर में कोई कैंसर का पेशेंट निकल रहा है, और ये बहुत महंगा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, लोगों की रेंज से बाहर हो गया।
0: बिल्कुल।
1: तो अगला प्रोजेक्ट हम जब करेंगे तो ऐसा मैं फिर टीम का नाम ले रहा हूँ, पूरे टीम का मन है कि अगर ऐसा कोई समय आया और प्रभु ने इच्छा रखा तो कैंसर पे गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और अभी वक्त है इजाजत लेने का, लेकिन जाते हुए आपका क्या मैसेज है हमारे फरीदाबाद के लोगों के लिए, हमारे रेडियो महारानी के लिसनर्स के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले धन्यवाद रेडियो महारानी का
0: जी,
1: खास करके बी आर भाटिया जी का, पूरी टीम का, कि इतना अच्छा सोशल काम आप कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम पूरे NCR के लोगों से जुड़ रहे हैं। आज हमने अपनी बात रखी है। जहाँ तक डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का सवाल है, तो लोगों से ये कहूँगा, पहले तो लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर भी परिवार में शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है
0: जी।
1: तो आप कभी भी डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र सेक्टर 8 में हम लोग हैं, पुलिस थाने के साथ में हमारा बिल्डिंग है, कभी भी आइए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं
0: जी।
1: हम अवेलेबल हैं, हमारा 7 डेज रहता है, 24/7 इमरजेंसी हमारे पास है, तो कभी भी किसी को जरूरत पड़े हम हमेशा तत्पर तैयार हैं।
0: क्या बात है। धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए।
1: थैंक यू, धन्यवाद
0: जी। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, सिर्फ एक 13 साल की लड़की और उसके सामने हजारों लोग, लाइट्स और कैमरा, फिर एक ऐसी आवाज जो सबको चुप कर दे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है सुनिधि चौहान की, जिन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ गाएंगी और सिर्फ जीतेंगी। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम था निधि चौहान। पापा थिएटर आर्टिस्ट और मम्मी घर का काम संभालती थी। घर में म्यूजिक का माहौल था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची एक दिन इंडिया की सबसे पावरफुल फीमेल वॉइस बनेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सुनिधि स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। स्कूल फंक्शंस, लोकल शोज, जहां भी मौका मिलता वहां गा देती और लोग बस देखते रह जाते। फिर आया 1996 का एक शो, मेरी आवाज सुनो, एक सिंगिंग रियलिटी शो। 13 साल की सुनिधि ने उस शो को जीत लिया। तब जज थी लता मंगेशकर जी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जीतने के बाद सुनिधि और उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए। सपना था बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का, लेकिन मुंबई सपने पूरे करने से पहले उन्हें तोड़ता भी है। कई दिन स्ट्रगल में गुजरे, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, वेटिंग, रिजेक्शन। फिर एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव ने उनकी आवाज सुनी और 1999 में आई फिल्म मस्त, सॉन्ग था रुकी रुकी सी जिंदगी। बस यहीं से सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड में गूंज उठा। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली जंग बाकी थी। और कैसे उन्हें सक्सेस मिला और कैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: जब 16 साल की लड़की को फेम मिलता है तो लोग तालियां भी बजाते हैं और उंगलियां भी उठाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में सुनिधि चौहान की। फिल्म मस्त के बाद सुनिधि को काफी सारे ऑफर्स मिले। उनकी आवाज में एनर्जी थी, बोल्डनेस थी, एक अलग ही एटीट्यूड था। लेकिन इंडस्ट्री में कंपैरिजन शुरू हो गया। ये नेक्स्ट अलीशा चिनॉय है, ये सिर्फ फास्ट सॉन्ग्स के लिए ठीक है। सुनिधि को एक टैग मिल गया, आइटम सॉन्ग्स और हाई एनर्जी नंबर्स की सिंगर। उन्होंने महबूब मेरे, धूम मचा ले, बीड़ी जले ले ऐसे टाइप के सॉन्ग्स गाए जो सुपर हिट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होने लगा कि लोग उनकी वर्सेटैलिटी को नहीं समझ रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी इजी नहीं थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने से काफी बड़े कोरियोग्राफर बॉबी खान से शादी कर ली, फैमिली के अगेंस्ट जाकर। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक साल में टूट गया। एक यंग लड़की जिसके पास फेम है, पैसा है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं। इस वक्त सुनिधि डिप्रेशन फेज से भी गुजरी, लेकिन यहीं से उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगी, मैं रूल करूंगी। और कैसे उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।
1: I've been

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर सिंगर गा सकता है, लेकिन हर सिंगर खुद को दोबारा बना नहीं सकता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2000 के मिड्स में सुनिधि ने अपनी आवाज पर काम करना शुरू किया, क्लासिकल ट्रेनिंग ली, वोकल कंट्रोल इम्प्रूव किया, और फिर आया फेज जहां लोगों ने कहा ये सिर्फ आइटम सॉन्ग सिंगर नहीं है। सॉन्ग्स लाइक भागे रे मन, सजना वे सजना, आ जरा, शीला की जवानी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सॉफ्ट रोमांटिक भी गा सकती हैं, सेंशुअल भी, क्लासिकल टच भी, और फुल रॉक स्टार एनर्जी भी। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस एक अलग लेवल की थी। लाइव कॉन्सर्ट्स में वो सिर्फ गाती नहीं थी, स्टेज को खुद ओन कर लेती थी। उन्होंने वेट लॉस किया, फिटनेस पर फोकस किया, स्टाइल ट्रांसफॉर्म किया। सुनिधि अब सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो परफॉर्मर थी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए, इंग्लिश ट्रैक्स भी रिकॉर्ड किए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करी, और कैसे आगे उनकी लाइफ में प्यार, मदरहुड और बैलेंस आया, सबके बारे में करेंगे बात मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत

क्या एक रॉक स्टार सिंगर एक काम मदर बन सकती है? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2012 में सुनिधि ने म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से शादी की। ये रिश्ता मैच्योर था, समझदारी भरा था। 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। मदरहुड के बाद उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया लेकिन म्यूजिक कभी नहीं छोड़ा। सुनिधि ने इंटरव्यूज में कहा, मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। उन्होंने रियलिटी शोज में जज का रोल भी निभाया, इंडियन आइडल, द वॉइस। अब वो सिर्फ सिंगर नहीं थी, मेंटोर भी थी। एक टाइम जो लड़की स्ट्रगल कर रही थी, अब वो नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दे रही थी। और आगे कैसे सुनिधि चौहान द अनस्टॉपेबल वॉइस बनी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर बॉलीवुड की फीमेल वॉइसेस की लिस्ट बनेगी ना, तो सुनीति चौहान का नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनीति चौहान की, जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा गाने गाए, मल्टीपल लैंग्वेजेस, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? उन्होंने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंडस्ट्री में जब सॉफ्ट स्वीट वॉइसेस का ट्रेंड था, तब उन्होंने बोल्ड हस्की पावरफुल वॉइस को मेनस्ट्रीम बना दिया। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, रेबिलियन है, फ्रीडम है। सुनीति चौहान सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक इरा है। और शायद इसीलिए जब भी स्टेज पर उनका नाम अनाउंस होता है, क्राउड बस एक ही चीज चिल्लाता है, वंस मोर, वंस मोर। तो ये थी कहानी सुनीति चौहान की, जो अपने में ही एक लेजेंड है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आगे आप किस इंसान की, किस पर्सनालिटी, किस फेमस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: Everything else is a shit.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।
3: अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
5: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट।

0: स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है, और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है, और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
0: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइफ डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज़ अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले पेशेंट, टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन। ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है, तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हेलो, दिस इज आरजे अंशलि फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम से और शो लेकर आ गई हूँ फिट है तो हिट है। और आज का शो होने वाला है एकदम खास, बिकॉज आज सेलिब्रेट किया जा रहा है मदर्स डे। सो आज हम बात करेंगे मदर्स की हेल्थ, हैप्पीनेस और सेल्फ केयर की। अगर बात की जाए मदर्स की, तो अक्सर माँ अपने परिवार का ख्याल रखते रखते खुद को कहीं भूल जाती है। लेकिन याद रखिए, एक हेल्दी और हैप्पी मदर ही पूरे फैमिली की स्ट्रेंथ होती है। सो आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशा फ्रॉम फोर्टीज हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो विमेंस हेल्थ और सेल्फ केयर से जुड़ी जरूरी बातें हमारे साथ शेयर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मदर्स डे स्पेशल फिट है तो हिट है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। सो डॉक्टर, आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर बात की जाए मदर्स की, मदर्स अक्सर अपनी फैमिली की जरूरत का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो सबसे पहले खुद को इग्नोर कर देती हैं। सो आज ये बताइए कि मदर्स के लिए अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखना क्यों जरूरी है।
1: थैंक यू आरजे अंजलि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन से ओपन किया। हैप्पी इंटरनेशनल मदर्स डे आप सबको। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं, बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली। सो हम वेलनेस और सेल्फ केयर की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाकी सबको तो डॉक्टर के पास उनके हेल्थ चेकअप्स के लिए ले जाते ही हैं, बट प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि साल में एक बार मिनिमम आप अपना भी फुल बॉडी इवेल्युएशन या चेकअप कराएं। लेडीज के लिए सारे ब्लड टेस्ट जैसे बाकी लोगों के होते हैं, मेन के होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे ब्लड काउंट, लिवर, किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, ये बेसिक वाले टेस्ट। बट इसके अलावा कुछ एक टेस्ट और इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा पैप स्मियर, एक बहुत ही सिंपल 5 मिनट का टेस्ट जो आपको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वुमेन के लिए मैमोग्राम या फिर ब्रेस्ट का जो एक स्पेसिफिक चेकअप होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज हम मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में बात कर रहे हैं मदर्स के सेल्फ केयर की, उनकी हेल्थ की, हैप्पीनेस की। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि सेल्फ केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, कभी भी सेक्रीफाइस ना करें अपनी हेल्थ को, बिकॉज अगर मदर हेल्दी है तो पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। सो माय डियर ब्यूटीफुल लेडीज, आज आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है मदर्स डे। एंड आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशा फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की, तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में मदर स्ट्रेस, फटीग और लैक ऑफ स्लीप का काफी ज्यादा सामना करती है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो किस तरह से इन सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है?
1: यस, सो फटीग और लैक ऑफ स्लीप बहुत प्रेवलेंट हो गया है, बट आप ये समझें कि स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारी बॉडी रेस्ट फेज में होती है,

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा।

0: हिट है तो हिट है शो लेकर फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, जो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशा। सो डॉक्टर, अगर बात करें एक हेल्दी और हैप्पी मदर की, सो एक हेल्दी और हैप्पी मदर बनने के लिए डेली रूटीन में किस तरह की सिंपल सेल्फ केयर हैबिट्स को इंक्लूड किया जा सकता है, सो दैट की हमारी मदर्स हैप्पी एंड हेल्दी दोनों रह सके।
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर जैसा हमने ओपनिंग में बात की कि बहुत जरूरी है, तो सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिक थिंग्स लाइक न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट उससे शुरू करते हैं और फॉलोड बाय मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट। सो मेरा एडवाइस है सब मदर्स के लिए, इफ दे कैन अपने लिए कुछ समय निकालें, इट कैन बी इवन 20 मिनट्स, कैन बी एन आवर, या फिर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ टाइम पूरे दिन में। एंड सबसे पहले तो अपनी बॉडी में आप क्या डाल रही हैं, यानी कि न्यूट्रिशन जो है आपका, आप सबको तो सबसे हेल्दी फूड खिला ही रही हैं जो उन बच्चों को ग्रो करने में हेल्प कराएगा, आपके हस्बैंड की एनर्जी अच्छी रखेगा, बट आप अपने लिए भूल जाती हैं, तो जो बचा कुचा होता है वही खाती हैं। बहुत कॉमन हैबिट है ऑफ ऑल वुमेन एंड मदर्स इन एनी हाउस होल्ड, तो इसको बदलना पड़ेगा। आपको जो बनाना है हेल्दी स्टफ वो अपने लिए भी निकालना है, रादर आप सबसे पहले खाइए ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे। सो वी ऑल नो व्हाट इज अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, which is high on fiber, fruits, vegetables, women के लिए बहुत important होता है।

0: आयरन ताकि हमारा ब्लड अच्छा रहे, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है ताकि हमारी बोन स्ट्रांग रहे, क्योंकि हम एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स तो हमने बेबी कैरी की है, उनको फीडिंग कराई है और आगे जाके हमारी बोन्स वीक हो सकती है, इसलिए पहले से हम अपना रिजर्व बना के रखना होता है। तो ये हो गई डाइट की बात। उसके बाद हमारा मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई पहले से रूटीन नहीं है तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करें, कैन इवन बी अ वॉक। लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ हो नहीं पाया, 5 मिनट बस वॉक किया। आई वुड से एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप 5 मिनट से शुरू करें सिंपल वॉक से, फिर उसको ब्रिस्क वॉकिंग, कोई फॉर्मल क्लास या फिर मसल ट्रेनिंग, एरोबिक्स, इन सब में कन्वर्ट कर सकती हैं धीरे धीरे, बिल्ड ऑन इट। द थर्ड थिंग इज योर मेंटल हेल्थ, वो भी बहुत जरूरी है ताकि आप इंटरनली पॉजिटिव रहें और अपने आसपास भी सबको वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, किसी को तो मेडिटेशन पसंद आ सकता है, किसी को योगा, किसी को जर्नलिंग, किसी को लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर अपना कोई भी हॉबी या पैशन हो उसको स्ट्रांगली परस्यू करें, तो दे कैन ज्वाइन सम क्लास लाइक डांस क्लास और आर्ट क्लास। इस सब से भी हमारी मेंटल एनर्जी इम्प्रूव होती है। मेंटल हेल्थ हमने डिस्कस कर ही लिया कि हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं, बट इसके लिए भी हमें पूरे दिन में टाइम निकालना पड़ेगा। मोस्टली पर्सनली फॉर मी द बेस्ट टाइम इज अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप कोई एक्सरसाइज या मेडिटेशन या फिर रीडिंग इस तरीके से या जर्नलिंग कर सकती हैं टू इम्प्रूव योर मेंटल एनर्जी।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपनी वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: फिट है तो हिट है शो लेकर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आज वंशली आपके साथ और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल एपिसोड, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशा। सो डॉक्टर, आज हमने मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में बात की मदर्स की सेल्फ केयर, हैप्पीनेस एंड हेल्थ के बारे में। सो डॉक्टर, अब टाइम हो गया है मैसेज का, आज आप मदर्स डे के स्पेशल इवेंट पर उन सभी मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी हेल्थ एंड हैप्पीनेस को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी बनाए रखती है एंड अपनी फैमिली के लिए हमेशा आगे रहती है।
1: वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मदर्स डे अगेन टू ऑल द मदर्स। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सारी विमेन जो हैं, चाहे वो अभी मदर नहीं है या उनके बच्चे नहीं है, फिर भी हम किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी को मदर कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हुए, आपके कोई एल्डर्स इन द फैमिली हुए या फिर आपके कोलीग्स भी हुए, क्योंकि मदर इंस्टिंक्ट हर वुमेन में प्रेजेंट होता है। तो फॉर ऑल ऑफ द लवली लेडीज एंड मदर्स आउट देयर, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट than anything else, so you can keep your glass full and pour from a full heart. Thank you
0: so much doctor. So आज मदर्स डे स्पेशल फिट है तो हिट है शो में आज हमने जाना मदर्स के लिए सेल्फ केयर सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। अगर माँ हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रेस फ्री होगी तभी पूरी फैमिली भी खुश और फिट रह सकेगी। और आज रेडियो महारानी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर ईशा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा अपने इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड इसी के साथ सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, खुद का ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

स्ट्रेंज बात है ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, दे बिकम इमोशन, मेमोरीज एंड मोटिवेशन. अभी जो गाना आपने सुना है सी यू अगेन, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होती. हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके. मैं आपके साथ गीत हूँ और शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड. और आज की कहानी कैसे इंसान की है जिनके पास शुरुआत में ना कनेक्शंस थे, ना लग्जरी थी और ना पावरफुल इंग्लिश. बस था तो एक सपना और उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत. अ स्मॉल टाउन बॉय, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और फिर अचानक ही कैसी दुनिया जहां लोग लैंग्वेज से जज करते हैं. इमेजिन बीइंग ब्रिलियंट बट स्टिल फीलिंग लेफ्ट आउट, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी. कभी जो लड़का टॉपर हुआ करता था, अब वही लड़का खुद को क्राउड में लॉस्ट फील करने लगा. लेकिन कुछ लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दे चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ. उन्होंने खुद कोडिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, रिस्क लिया, फेलियर्स देखे और वो रास्ता चुना जिससे लोग अक्सर डरते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा फेज भी आया जब फैमिली ने कहा बस करो, कंपनी बंद करो, स्टेबल नौकरी कर लो. और ऑनेस्टली उस वक्त की बात बहुत प्रैक्टिकल थी, बिकॉज एट द एज ऑफ 27 उस इंसान की सैलरी सिर्फ 10,000 थी. इतनी कम के रिश्ते तक आने बंद हो गए थे, बट डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स. आज वही इंसान इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज टू मूवी टिकट्स टू ऑनलाइन पेमेंट्स, आज करोड़ों लोग उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शायद बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है. तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस की नहीं, सक्सेस के पीछे वाले अकेलेपन की, प्रेशर की, फेलियर्स की और उस हंगर की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है. लेकिन अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज अगले लिंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस बिजनेसमैन से जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की पेमेंट हैबिट बदल दी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज बिजनेस अनप्लग्ड विद

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। अभी तक हम उस इंसान की बात कर रहे थे जिसकी स्टोरी छोटे शहर से शुरू होकर बिलियन डॉलर सक्सेस तक पहुँची। अब टाइम है नाम रिवील करने का, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट इज विजय शेखर शर्मा, यस द फाउंडर ऑफ पेटीएम। अगर आज इंडिया में कोई चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक QR कोड स्कैन कर रहा है तो रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं विजय शेखर शर्मा का विजन खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, उन्होंने शुरुआत बिलियनेयर बनकर नहीं की थी। He was just a small town boy from उत्तर प्रदेश, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, टीचर फादर, सिंपल फैमिली, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि कहानी प्रिविलेज की नहीं है, ये कहानी हसल की है। अ बॉय हु वंस स्ट्रगल्ड टू इवन स्पीक इंग्लिश आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ बिलियन डॉलर मीटिंग करता है। अ मैन जिसे कभी 10,000 सैलरी पर लोग सेटल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी ने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPO लॉन्च किया। बट ट्रस्ट मी, सक्सेस सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है ना दोस्त, उतनी होती नहीं है। बिहाइंड एवरी बिग कंपनी देयर इज अ फेज ऑफ लोनलीनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड साइलेंट सेक्रीफाइसेस। विजय शेखर शर्मा की जर्नी में भी वो फेज आया था जब उन्हें लगा शायद वो पीछे रह गए हैं, जब फैमिली को समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड समवेयर दैट्स द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स लोगों को समझ नहीं आते हैं तब सबसे मुश्किल होता है खुद पर बिलीव करते रहना। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंडिया की हैबिट बदल दी। रिचार्ज ऐप से शुरू हुई जर्नी आज बैंकिंग, टिकट्स, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग सब तक पहुंच चुकी है। और सबसे इमोशनल बात, एक दिन उनकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्होंने उनसे पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? इमेजिन दैट मोमेंट जब एक मिडिल क्लास मदर को खुद यकीन ना हो कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बच्चा होता है जिसने कभी क्वाइटली स्ट्रगल किया होता है। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में, उनके चाइल्डहुड, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को लिमिटेशन नहीं बनने दिया। तो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन कॉन्टैक्ट फोटोस अपने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो, और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ चलिए बात करते हैं आखिर सत्तू को टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है। सत्तू एक ही नहीं होता, उसके फ्लेवर भी कहानियाँ लेकर आते हैं, जैसे नमकीन सत्तू यानी प्याज नींबू हरी मिर्च के साथ, मीठा सत्तू गुड़िया चीनी के साथ और लिट्टी चोखा के अंदर भरा हुआ सत्तू, पूरा बिहार एक बाइट में। हर घर का अपना स्टाइल, हर घर का अपना स्वैग, हर ग्लास का अपना इमोशन। वो कहा है कि एक ही सत्तू के कितने रूप निकल आए, जैसे एक ही जिंदगी के कितने धूप छाव निकल आए। अब अगर सत्तू की बात करें तो आइए जानते हैं गरीबी नहीं विजडम क्यों कहा जाता है इसे। एक वक्त था जब लोग सत्तू को गरीब का खाना कहकर इग्नोर करते थे और आज न्यूट्रिशनिस्ट इसे सुपर फूड बोलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले लोग इसे समझते थे, अब लोग इसे रिसर्च कर रहे। वो कहा है कि जो कल तक नजरअंदाज था आज वही ट्रेंड बन गया। सत्तू ने सिखा दिया असली सोना कभी पुराना नहीं होता। जब बात कर रहे हैं सुपर फूड की तो वापस आकर जानेंगे आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू ने। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज की कहानी हमें सत्तू के बारे में बहुत कुछ बता रही है। तो आइए चलिए जानते हैं आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू ने। आज के कैफेज में सत्तू स्मूदीज, प्रोटीन ड्रिंक्स, डिटॉक्स मिक्सचर, देसी चीज ग्लोबल हो रही है, पर जो असली मजा है वो मिट्टी के ग्लास में घर के आंगन में पंखे के नीचे बैठकर धीरे धीरे पीने में है। याद रखिए, सत्तू सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये मिट्टी का आशीर्वाद है, एक ऐसा स्वाद जो शोर नहीं करता पर जिंदगी चला देता है। वो कहा है कि ना महंगा था ना फैशनेबल था, पर हर मुश्किल में काम आने वाला था। सत्तू ने सिखा दिया असली ताकत हमेशा सिंपल होती है। अगली बार जब आप थक जाओ या गर्मी से परेशान हो जाओ तो एक बार सत्तू जरूर ट्राई करना, हो सकता है आपको मिट्टी की ताकत महसूस हो जाए। और इसी के साथ कल्चर कारवा में आज हमने बात की सत्तू की। कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई याद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस उनसे जुड़ी यादें और गहरी हो जाती हैं। कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनके किस्से हमेशा बाकी रह जाते हैं। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, जहां हर वीकेंड हम बात करते हैं उन फिल्मों और गानों की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं एक इमोशन बन जाते हैं। और आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्म्स की जिनके गाने जितने खूबसूरत हैं उनके पीछे की कहानियां उतनी ही इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जहां रिवेंज के साथ साथ एक इंसान का बदलाव भी देखने को मिलता है। और बदलाव की बात हो ही रही है तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मूवी है बदलापुर।
1: लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद।
0: और इस मूवी की हम बात करें तो पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ रिवेंज की कहानी है, लेकिन अगर आप फिल्म को ध्यान से समझो तो इसका टाइटल ही उसकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता है। बदलापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि बदला से बदलाव तक का सफर था। और शायद इसलिए फिल्म की एंडिंग भी लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दी गई, यानी कि पहले इस मूवी में एयरपोर्ट क्लाइमेक्स प्लान हुआ था, लेकिन जब रेनी एंडिंग शूट हुई तो मेकर्स को लगा उसमें इमोशंस ज्यादा नेचुरली फील हो रहे हैं और वही सीन फाइनल रखा गया। और रियलिज्म इतना इम्पोर्टेंट था कि जेल सीन्स जो भी हमें इस मूवी में देखने को मिले वो रियल नासिक जेल में शूट हुए, जहां एक्चुअल इनमेट्स भी मौजूद थे। और मैंने मूवी के बारे में इतना बता दिया आपको, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था यानी कि वरुण धवन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उस इंटेंसिटी के लिए उन्हें स्पेशली कुछ लेयर्ड और इमोशनल फिल्म्स देखने को बोला गया था, ताकि वो कैरेक्टर को और डीपली समझ सके। और इतना ही नहीं, एक और डिटेल जो काफी लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी इस फिल्म में, वो ये थी कि जेल कॉप्स जो इनफील्ड यूज करते हैं वो उस वक्त मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुए थे, लेकिन इस मूवी में देखने को मिले। मतलब फिल्म का हर सीन डिटेलिंग के साथ क्रिएट किया गया था। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में गाना जीना जीना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां सस्पेंस को इतना केयरफुली हाइट किया गया कि क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ कुछ वक्त पहले ही शूट हुआ था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
2: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जिसका क्लाइमेक्स एंड में शूट किया गया, उस मूवी का करते हैं सस्पेंस खत्म और बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, उस मूवी का नाम था एक थी डायन।

और अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेकर्स ने इसे टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये एक मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, इसलिए कहानी को किसी पुरानी हवेली में नहीं बल्कि एक रिलेटेबल वर्ल्ड में सेट किया गया। और सस्पेंस को मेंटेन करने के लिए फिल्म का क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ एक महीने पहले शूट हुआ, ताकि डायन की आइडेंटिटी लीक ना हो जाए। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो उसमें लिजार्ड सिंबोलिज्म भी बार बार नजर आता है, क्योंकि फोकलोर के अकॉर्डिंग विचेस अपने रूप बदल सकती हैं। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म की स्टोरी एक्चुअली मुकुल शर्मा की शॉर्ट स्टोरी मोबियस स्ट्रिप से इंस्पायर्ड थी, मतलब फिल्म का हर एक एलिमेंट केयरफुली लेयर्ड था। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में गाना यारम। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसे करेक्टर की जिसका साइलेंस भी काफी कुछ कह जाता है। और जिस मूवी में एक करेक्टर देखने को मिला वो मूवी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। कौन सी थी ये मूवी और कौन सा था ये करेक्टर बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जो सिंपल सी दिखती है लेकिन है नहीं, उस मूवी का नाम है तलाश।
1: हम जैसे लोग तो गिनती में नहीं आते, और जो है ही नहीं वो गायब कैसे हो सकते हैं?
2: रात नहीं जागते हैं
1: कि मेरी जगह यहाँ कोई नहीं है।

मुंबई बेस्ड थी, लेकिन इम्पोर्टेंट सीन्स पॉन्डिचेरी में शूट हुए और अंडर वाटर सीक्वेंस लंदन स्टूडियो में कंप्लीट हुआ। मतलब स्क्रीन पर एक सिटी नजर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मल्टीपल लोकेशंस का कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है, तो सुनते हैं विशाल डडलानी और शंकर महादेवन की आवाज में जी ले जरा गाना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां स्टाइल भी था, पावर भी, और डायलॉग के साथ साथ म्यूजिक भी लोगों के दिल में उतर गया। कौन सी मूवी का था ये गाना और कौन सी थी ये मूवी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसा गाना जो सबके दिलों में उतर गया, तो ये गाना जिस मूवी में सुनने को मिला है बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की।
1: सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बम्बई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भी की बिल्ली बन के बैठा है।
2: ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा।
1: क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो।
2: हल्के में मतलब चुप।
0: और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि दो अलग पर्सनालिटीज और दो अलग सोच का सफर भी थी। यानी कि एक तरफ सुल्तान मिर्जा, जिसे अजय देवगन ने प्ले किया और जो रियल लाइफ हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड माना गया था, और दूसरी तरफ सोहेब, जिसका करेक्टर दाऊद इब्राहिम की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड था। मतलब रियल लाइफ और सिनेमा का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्गली नजर आता है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि रणदीप हुडा ने ये फिल्म 3 बार रिजेक्ट की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी कास्ट के बीच उनका करेक्टर शायद प्रॉपरली नोटिस ना हो। लेकिन बाद में डायरेक्टर ने उन्हें काफी कन्विंस किया और वो मान गए। और फिल्म में जो विंटेज कार अजय देवगन यूज कर रहे थे वो उन्हें इतनी पसंद आई कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने वो कार उन्हें गिफ्ट कर दी थी। अगर मुझे भी किसी मूवी में ऐसे ही गिफ्ट मिले तो मैं भी एक मूवी तो जरूर करना चाहूंगी। खैर, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में गाना पी लूं। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज की ये म्यूजिकल जर्नी आपके दिल तक जरूर पहुँची होगी। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाते रहिए और म्यूजिक को सिर्फ सुनिए मत, महसूस भी कीजिए। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: बाबा, बाबा।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: चला अर्जुन, शुरू हो जा।
5: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
4: इरशाद।
5: अरे आगे खाली हो जाएगी।
4: क्या
5: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
4: कौन हम?
5: रोडवेज वाले।
4: ओके।
5: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
4: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
5: क्या बात कर रहे
4: हो?
5: आगे सुनो।
4: सुनाओ।
5: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
4: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
5: अरे सुनो,
4: बाय।
5: मीठी लस्सी तो पी लो।
6: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
7: सुन भाई सुरेंद्र।
8: हाँ भाई सुरेंद्र।
7: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी। 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए। शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
8: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, बदलाव बड़ी बातें नहीं, छोटी सी शराफत मांगता है। अडॉप्ट

0: जाए।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: जॉनी जॉनी।
5: यस पापा।
4: बाइक चलाना है?
5: यस पापा।
4: हेलमेट पहनना है?
5: ओके पापा।
4: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
5: नो पापा।
4: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो हम बोल नहीं पाते वो कहीं ना कहीं लिख दिया जाता है, और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक शायरी होती है। एक वक्त ऐसा था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियों में उतार रहे थे, फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया साहब जैसे पोइट्स ने फीलिंग्स को बिना किसी फिल्टर के सामने ला दिया, और आज वही अल्फाज स्टेज पर जीते हैं, महसूस होते हैं, मंच पर आवाज बन जाते हैं। हे हाय, मैं हूँ आरजे गीत और शो है आज दिल शायराना, और मेरे साथ शो में बहुत सारे कवि और कवित्री मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। पंकज राणा जी, सुनील शर्मा जी, रेणु मिश्रा जी और कमल धमेजा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ आज, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो इन क्वेश्चन के जरिए हम चाहते हैं कि लिटरेचर जो कहीं पीछे छूट गया है वो हम फिर से उसको ला पाएं, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो समझ पाएं कि पोइट्री को किस इमोशन में लिखना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये सबसे है, हम बारी बारी आएंगे सबके पास, और सवाल ये है आप क्यों लिखते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि अगर पोइट्री ना होती तो आपके जो इमोशन है, आपकी बातें जो है वो आप कहाँ रखते। तो मैम आपसे ही शुरू करना चाहूंगी मैं ये सवाल। रेणु मिश्रा
2: जी, हम एक्चुअल में लिखते हैं अपने मन के भावों को लिखते हैं, और उन भावों को हम, मेरे भाव कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कोई भाव ऐसे होते हैं जो हम सबसे मिलते जुलते होते हैं, तो उन भाव को हम व्यक्त करके अपनी लेखनी से चलाते हैं, और उन भाव के तार हम दूसरों के भाव से जुड़ते हैं और हम संदेश दे जाते हैं, और शायद उनके दिल से भी वो भाव मिलते होंगे
0: जी।
2: तो हम इसलिए लिखते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचे और एक समाज को वो सही दिशा दिखा सके। हम
0: जी
2: हम अपनी लेखनी में चला लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम प्रेम जो है उसे भी हम प्रीत को भी ढाल लेते हैं, और कभी हम देश के लिए भी कुछ शब्द, जब हम देखते हैं कि देश में अभी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है तो समय हमारे खुद के अपनी आवाज आने लगती है कि हमें भी इस देश के सैनिक बनते तो शायद हम ऐसा कर पाते, और हम उस जगह पे खड़े होते तो कुछ करते, तो हम लोगों तक ये संदेश दे पाते हैं सिर्फ अपनी लेखनी से, अपनी भावों को व्यक्त करते। तो मैं सोचती हूँ कि एक कवि जो है, एक साहित्यकार जो है, वो एक समाज का दर्पण होता है, और वो अपनी चीजों को लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है
0: जी।
2: और वही मैं भी शायद कर लेती हूँ लेखनी के माध्यम से
0: जी जी जी।
3: मैंने कोरोना का दौर था जब लिखना स्टार्ट किया
0: जी,
3: और बहुत सारे गीत लिखे कि कोरोना पे जो त्रासदी थी उसके बारे में भी लिखा, और जो लोग कह नहीं पाते कुछ बातें जो हम कह नहीं पाते, तो वो शब्दों में, कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से शब्दों को पिरोते हैं, और जब आप सब लोगों के सामने पेश करते हैं
0: जी,
3: मन की भावनाओं को पेश करते हैं।
4: लिखने का तो मेरे को, मैं बचपन में मैं लिखती थी, जब कोई मुझे कुछ बोल देता या मेरा मन उदास होता या कोई ऐसी कोई बात होती तो मैं कुछ लिख देती अपने मन की, जो भी बातें मेरे मन में आती, चाहे मैं आंसू ही बहा रही हूँ, रो रही हूँ, या कोई किसी ने, दोस्त ने कुछ बोल दिया तो मैं लिख देती थी। एक बार तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि वो शायरी थी, लेकिन मैं जानती भी नहीं थी तब कि ये मैंने शायरी लिखी है ये
0: जी।
4: लेकिन मुझे डायरी लिखने का भी बड़ा शौक था, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लिखती रहती थी, यही था मेरा। और मैं कभी ये जान, कभी मैंने ये नहीं, पहले गीत भी गाती थी मैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कवित्री बनूंगी या कभी ऐसा कुछ होगा। तो वही है, जब वो कोरोना का दौर आया और हाथ में मोबाइल आया तब सब लिख रहे थे, तो मुझे इतना आता भी नहीं था कि कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना तो आता था लेकिन कैसे किस तरीके से, क्योंकि हमारी जो ये लाइन है उसमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जो गिनती में लिखे जाते हैं।
0: हाँ जी,
4: कुछ चीजें तो खुद ही लिखी जाती हैं जो स्वतंत्र लिखते हैं, और कुछ होते हैं कि जैसे गजल होगी
0: मीटर में
4: होती है, कुछ तो मीटर में ही होते हैं, वो हमें करना पड़ती है। तो धीरे धीरे हमने फिर लिखना सीखा और अपने मन की बातें सब लोगों में लाना, और अपने आप को भी बड़ी तसल्ली होती थी कि मैंने कुछ लिखा, या कोई अप्रिशिएट करता था कि आपने कुछ लिखा। तो धीरे धीरे करके बस जुड़ते चले गए, बस यही नहीं है कि हमें किसी को दिखाना, बस ये होता है कि लिखने से मन का जो बोझ है, जो दर्द है,
0: वो हल्का हो जाता है,
4: वो हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल।
5: सभी श्रोताओं को हरियाणा गौरव सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपने मन की बात कहने के लिए
0: जी,
5: क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का। जिस वक्त मैं कक्षा चार पाँच का विद्यार्थी हूँ तब से ही मैं कुछ ना कुछ शायरी वगैरह, कक्षा 6 में चला गया, फिर कुछ गीत लिखा, फिर जैसे जैसे व्यस्त होता गया और क्लासेस में आगे बढ़ता गया तो मेरा लिखने के भाव मतलब बढ़ते गए ठीक है ना। तो फिर जब मैं फिर कॉलेज पूरा करने के बाद बाहर निकला तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे मेरी आत्माएं थम गई हो। काम के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में वो लेखन, क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं था ये लेखन क्या है,
0: जी जी,
5: लिखना क्या है, क्या शब्द कहाँ जोड़ना है, कहाँ मात्रा देनी है, कहाँ क्या देना है, हाँ। तो इन चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जब उसके बाद मैंने 2003-04 के करीब फिर मैं एक मंच पे गया, ऐसे ही गया तो ऐसे ही सुनने के लिए, लेकिन मेरे मन में भी उथल पुथल हुई, जो अंदर दबे पड़े भाव थे वो निकलने शुरू हुए,
0: हाँ जी।
5: और मंच पे जाकर के मैंने कुछ अपने पुराने शब्द, शायरियां थी वो मैंने वहां पे दी, तो वहां से फिर मेरे को एक ललक, जिसको कहते हैं ना ललक, फिर लिखने की ललक लगी
0: जी।
5: फिर मुझे कुछ मेरे मित्र मिले, उन्होंने बोला कि अनवरत लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जैसे कि आजकल जो लोग हैं, जो यंग हमारे पोइट्स हैं, बहुत ज्यादा श्रृंगार के बारे में लिख रहे हैं. मैं इस बात को बिल्कुल ऐसे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि श्रृंगार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा था जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो राइटर थे वो समाज को आईना दिखा रहे थे, समाज के लिए लिखते थे. तो आज आपको कितना लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो जो लिख रहे हैं उसमें उनकी सोसाइटी या उनका देश भी दिखता है?
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रखी है. क्योंकि श्रृंगार वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आजकल जो लोगों का जो चलन हो गया है, जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे पास आ चुकी है, तो वो समाज को तो दर्पण नहीं दिखा रहे, समाज को सोचते हैं. वो तो समाज को बल्कि एक बोझ समझते हैं.
0: जी जी,
1: मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमसे दूर रहे. और वो आज की मीडिया जो हमारे साथ जो है, हमारे जो इंटरनेट जो कनेक्शन है, इससे वो क्या है, आकर्षित होते हैं और प्रेम के गीत सुन रहे हैं. देखो, पहले जो था, पहले के कवि जो लिखते थे वो समाज से संदेश पर कविताएं लिखते थे जो लोगों तक पहुंचती थी और लोगों को सुधारने का एक रास्ता भी दिखाती थी.
0: जी.
1: और अभी जो मिलते हैं, हम यह मूवी देख ले, ये हमारी सभी बच्चों के मतलब एक देखा जाए साहित्य का क्षेत्र ही है. चाहे हम समाचार पत्र पढ़े, चाहे हम मूवी देखे, चाहे हम कोई पत्रिका पढ़े या नॉवेल पढ़े, तो जो हमारे पास परोसा जा रहा है वही बच्चे ग्रहण कर रहे हैं एक्चुअल में.
0: पंकज राणा जी आपके पास आते हैं, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. जब आप मंच पर होते हैं, मंच से पहले क्या कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस है जो आप डेली करते हैं ताकि आपके मंच पे जाके फंबल ना हो?
2: देखिए कि पोइट्री, जब कभी हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से रखा गया.
0: हाँ जी.
2: जैसे कोई जयंती है तो हम तैयारी करके जाते हैं, उसमें पता रहता है कि भाई ये हमें रचना वहाँ पढ़नी है. मैं अपनी बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, बस मंच पे गया और सुना दिया.

0: कमल धमेजा जी आपके पास आती हूँ, आपका ही सवाल है ये। पंकज राणा जी ने जो अभी सवाल कहा कि कोई ना तो कोई कॉपी बनाई है, गुरुजी जो थे वो, जो हर एक आर्ट का कोई ना कोई गुरु होता है, हमारा मेंटर होता है। जैसे अगर हम म्यूजिक की बात करें या हम डांस की बात करें, लेकिन अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई गुरु हुआ है ना, कि सिखाया गया है फिर आगे वो गए हैं बच्चे, वो पोइट बने हैं। तभी शायद ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई भी मीटर नहीं है, कुछ नहीं है और बस लिखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पोइट्री में भी मेंटोर होने चाहिए, गुरु होने चाहिए?
1: बिल्कुल, गुरु के बिना तो कहते हैं ना ज्ञान ही नहीं है
0: जी।
1: तो गुरु है तभी है, क्योंकि वही वाली बात है कि भाव तो हम लिख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे कहीं भी, पर वही है कि गुरु होना जरूरी है। और मेरे गुरु भी है, जरूर है, वो है लखनऊ से हैं
0: जी,
1: डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं वो।
0: सुनील जी आपके पास आते हैं सर, एक सवाल है
2: जी।
0: पहले लिटरेचर बहुत स्लो था, लोग वक्त देते थे, मंचों पर भी बहुत वक्त देते थे, समझते थे, लेकिन अब सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, बिकॉज ट्रेंड भी है। आपको क्या लगता है कि जो अभी स्पीड जो चल रही है, इससे लिटरेचर ग्रो हुआ है या पीछे छूट गया है?
2: क्या है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी ये चाहता है कि जो 2 घंटे का सफर है वो मैं 10 मिनट में तय।
0: हाँ जी बिल्कुल।
2: इससे क्या है, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां, वो सब समाप्त होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता सब समाप्त होता जा रहा है, और आगे बढ़ने की होड़ में हम अपने लेक्चर को बिल्कुल पूछ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा होना चाहिए, समाज के अंदर अपने आप से, खुद से जो हमारी लेखनी है, एक अच्छा संदेश है
0: जी,
2: समाज उसके ऊपर अमल करे, नई पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा संदेश जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये देश यूं ही चलता रहे मस्ती के साथ, और हमारी संस्कृति ऐसे जिंदा रहे।
0: आपसे एक और सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, अकेले कमरे में बैठी हुई कोई अच्छी सी लाइन या मंच की तालियां, क्या ज्यादा पसंद है? और बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहती हूँ आपसे।
2: मुझे मंच की तालियां पसंद है।
0: ये ऑनेस्ट आंसर है आपका।
2: क्या मुझे मंच की तालियां पसंद
0: है। कोई ऐसी रचना जिस पे आपको मंच पर बहुत ज्यादा तालियां मिली हो और मिलती रही हो, वो रचना हम जरूर सुनेंगे।
2: जी, जी
0: जी।
2: पहले 4 पंक्तियां
0: जी
2: निवेदित करता हूँ,
0: बिल्कुल, बिल्कुल
2: सभी श्रोताओं के बीच में
0: जी,
2: के भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, चढ़ते हुए सूरज का ऐसा स्वभाव हूँ, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, बस इस भरे मैं खाने की असली शराब हूँ।
0: क्या बात है।
2: और 4 पंक्तियां देखिए, के मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, महकती शाम लिख दूंगा, छलकते जाम लिख दूंगा, तोड़ कर लाज के बंधन चली आओ।

0: सब को सब नहीं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: हमीजा जी आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, मंच की तालियां या फिर अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: देखो, अगर अकेले कमरे में बैठी ही अच्छी लाइन लिखी जाती है और तालियां किसे पसंद नहीं।
0: जी, तो कोई रचना जो आप यहाँ पर आज रखना चाहें, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहें?
1: जी जरूर, पहले मैं चार पंक्तियाँ आपके सामने अपने फौजी भाइयों के लिए

0: बहुत बढ़िया पंकज जी, आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको, मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: अच्छी लाइन लिख जाए और मंच पे तालियां, मुझे, मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि तालियां बजाए, मेरी लाइन इतनी सबको इतनी अच्छी लगे कि तालियां अपना आप बज उठे।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: मुझे ये पसंद है
0: जी।
1: और मैं आपको सौंपता हूँ चार लाइनें अपने आराध्य के लिए, प्रभु श्री राम से शुरुआत करता हूँ।
0: जी जी जी।

केवट पार उतारा, प्रभु ने केवट पार उतारा। लोगों ने कहा कि श्रृंगार, अभी उनकी बात पे आता हूँ कि लोग पर श्रृंगार फुवड़ ना हो, कि श्रृंगार कैसा लिखा जाए, कि प्रेम क्या है। भात नरसी कलाए थे वो प्रेम है, साग विदुर घर खाए।

प्रेम है बेर सबरी के। और प्रेम पे मैंने लिखा कि मैं प्रेम पे लिखता हूँ तो भगवान के प्रति, और ये प्रेम लिखता हूँ कि शुद्ध प्रेम लिखने की कोशिश होती है। प्रेम पतित पावन

0: जीना पड़ता गरल। अपनी रचना जो मेरा अध्याय।
1: मैम आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
2: मुझे तो अकेले में लिखना ही पसंद।
1: मुझे यही एक्सपेक्ट था आपसे।
2: लिखना पसंद है और जब हम लिखेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों तक तो आवाज जाएगी, जब लिखेंगे नहीं तो सुनाएंगे।
1: एग्जैक्टली जी,
2: तो मैं यही बोलती हूँ। तो मैं चार पंक्तियाँ देश के नाम समर्पित करती
1: हूँ। जी जी जी।
2: और माँ शारदे को नमन करती हूँ। झुका कर आसमां हमको सितारे तोड़ लाना है। मैं यही संदेश देती हूँ लोगों को कि डरना नहीं है हमें,

0: वैसे मेरे सवाल और भी हैं, पर समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और जाते जाते सबसे एक सवाल ये है कि आपके लिए कविता क्या है? बस इसी सवाल से हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैम आपसे एक सवाल है, कविता क्या है आपके लिए?
1: मेरे लिए कविता एक मेरे मन के भाव है, उद्गार है, जो मेरे मन में जैसे भाव आते हैं मेरे संबल बना मेरे लिए। कविता मेरे लिए शक्ति बनी। जब मेरे पति संसार से चले गए तो मेरे को लगा कि मेरी लेखनी मेरे साथ है, तो मुझे दुनिया की किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और मैं इसे अपने संबल मानती हूँ, अपनी शक्ति मानती हूँ।
0: जी सर, आपके लिए?
2: कविता मेरे लिए एक आत्मा है
0: जी,
2: कि हम अपने मन के भाव जब प्रकट करते हैं सब कुछ हम लोग कह नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने पिता को खोया तो मैंने उनके ऊपर जब चार लाइनें लिखी तो बहुत, मैं आपको चार लाइनें चलते चलते सुना भी देता हूँ कि मैंने लिखा, जब से गया है बाग कमाली मुरझा गए फूल

0: मन के भाव हम जो नहीं सबके सामने प्रकट कर पाते हैं
1: जी,
0: लोगों को लगता है कि वो कविता है पर वो मन के भाव होते हैं
1: जी। मेरे लिए कविता मेरे मेरा दुख दर्द मेरी हर खुशी कविता है
2: जी।
1: और जब मैंने चार पंक्तियां स्टार्ट करी थी लिखना उस वक्त, और वही बात है कि उस दिन ही मैं फेसबुक से जुड़ी थी और लोग लिख रहे थे, आया था टाइटल पिता, तो उसी दिन मेरे पापा का एक साल हुआ था, मेरे पापा इस दुनिया से गए थे, तो बस तभी मेरे को तभी से मैंने लिखना शुरू किया
2: जी।
1: कविता बस मेरे साथ मेरे मेरा दुख दर्द और मेरे जिस्म से हर एक चीज से जुड़ी हुई है, जिसमें कि जो मैं कह नहीं सकती, जो आंसू में आंखों में रो के रखती हूँ वो अपने कागज पर मैं उतार देती हूँ
2: जी। सर आपके लिए कविता क्या है?
3: कविता मन के भाव है। कविता जो भी हमारे मन में भाव आए वो हमने एक कागज पे उतारे वही कविता बन जाती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये विश्व युद्ध के मुहाने खड़ा है और हम देख रहे हैं निर्दोषों की जान जा रही है,
0: बिल्कुल
3: वहीं से मानवता बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, ठीक है, तो वहीं से भाव उतर करके आए हैं

0: गुबार है। सिर्फ ये चार पंक्तियां ही दूंगा इस गीत की
1: जी।
0: के अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, जार जार रो रहे दर्द की उठी लहर, गूंजती हवाओं में ये कैसा चित्कार है।

0: बेकार है, बस यही कविता है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब मेरे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। कहते हैं कि वक्त बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन जो असली होता है वो हमेशा दिल तक पहुंच ही जाता है। आप सुन रहे थे आज दिल शायराना, मैं आपसे विदा लेती हूं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स तक इतनी खूबसूरत रचनाएं पहुंचाने के लिए।
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार
1: जी। जी और लिसनर्स, आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

99.6 कुछ हटके। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आया हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप और मैं। और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार, वैसे मैं आज किसी एक स्टार की नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि आज की ये शाम डेडिकेटेड है उन सभी माओं को जिन्हें पर्दे पर देखकर हम सब बड़े हुए हैं, जिनकी ममता इतनी रियल लगती थी कि कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक किरदार है। ऐसा लगता था जैसे सच में वो एक्टर या एक्ट्रेस की रियल माँ हो, क्योंकि वो दौर ही कुछ और था जहाँ माँ सिर्फ एक साइड किरदार नहीं होती थी बल्कि कहानी की धड़कन हुआ करती थी। उनके आंसुओं पर ऑडियंस रोती थी और उनकी एक मुस्कुराहट पर दिल को सुकून मिलता था। फिर चाहे वो सुहाग फिल्म की निरूपा रॉय जी हों या फिर बेटा फिल्म की अरुणा ईरानी जी, हर तरफ से हर किरदार में बहुत अलग रही इनकी कहानी। और आज मैं इन्हीं कहानियों से आप सभी को मिलवाऊंगी, पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आप एंजॉय कीजिए इन गानों को, वापस आकर उन सभी माओ की बात करेंगे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सुकून देने वाला बनाया। वैसे आज के एपिसोड में आप भी मेरे साथ हो सकते हैं शामिल। अगर आपके पास भी किसी ऐसी माँ की कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो नंबर है मेरा 9654896896। तुरंत अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए कि आज आप मेरे साथ कौन सी कहानी, कौन सा किस्सा शेयर करने वाले हैं। पर इससे पहले कुछ गीत।

0: 6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ सदाबहार गीत।
1: हरियाणवी गानों की बीट पे थिरकना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।
2: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज मदर्स डे स्पेशल शो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फीमेल ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उदा पवार जी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 9 साल की उम्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त कदम रखा था जब साइलेंट फिल्में बनना शुरू ही हुई थी। 1928 में बनी पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते इन्होंने ना केवल फिल्मों में शूटिंग की बल्कि उन्हें प्रोड्यूस भी किया। एज अ को प्रोड्यूसर 1932 में इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कैलाश, और उसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा अंटिल द फिल्म जंगे आजादी केम इनटू बीइंग। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा के साथ हुए एक इंसिडेंट में ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी कि इनके फेस का लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था और इनकी आंख में भी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से अब इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में रोल्स मिलने भी कम हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी, पर ये तो हमारी झांसी की रानी निकली, क्योंकि इन्होंने अपने साथ हुई मिस हैपनिंग को भी काफी पॉजिटिव बना दिया। 1950 में आई फिल्म दहेज से इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाना शुरू कर दिया और जितना प्यार इन्हें एज एन एक्ट्रेस लोगों ने दिया उतनी ही ज्यादा एक्सेप्टेंस इन्हें इनके नेगेटिव किरदार के लिए भी मिली। ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोग इन्हें एक नेगेटिव सास के किरदार में बहुत कर्ज करते थे, बहुत ज्यादा इन्हें हेट्रेड का भी सामना करना पड़ा, पर ये हेट्रेड पर्सनली इनके लिए नहीं थी बल्कि इनके उस किरदार के लिए थी जो ये निभाया करती थी। तभी तो इन्हें रमानंद सागर साहब की रामायण में मंथरा का किरदार मिला था और इस किरदार को कौन भूल सकता है। हर कोई इस किरदार से इतनी नफरत करने लगा था कि आज भी जब मंथरा का नाम किसी के कानों में पड़ता है तो सिर्फ ललिता पवार जी का चेहरा उनके आगे आ जाता है। खैर, ये उनके किरदार की हार नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी जीत थी और इसी जीत को हासिल करते हुए उन्होंने अपने 70 साल के करियर में पूरी 700 फिल्मों में किरदार निभाए। ना केवल हिंदी बल्कि मराठी और गुजराती भाषा में भी उन्होंने कई किरदार निभाए हैं। इन्होंने हर किरदार को कुछ इस खूबसूरती से निभाया कि आज हमारे शो में सबसे पहले नंबर पर सिर्फ ललिता पवार जी का ही नाम आया। खैर, ऐसी एक और माँ थी जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की सैडेस्ट माँ कहा जाता था, उनसे भी आपको जरूर मिलवाऊंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को, वापस आकर उन सैडेस्ट मॉम की भी बात कर लेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।
3: तो एक उम्र निकाल दी बिना मिले तुमसे और ये लोग हमें इश्क करना सिखा रहे हैं।
4: तू क्या जाने मेरे यार है।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ सदाबहार गीत।
4: चुप तकती हूँ कहना सकती हूँ।
3: जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। मैं हूँ एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियाँ आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी मदर्स डे स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ मिजरी यानी कि बॉलीवुड की माँ की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल कुछ इस तरह से जीता कि जब भी उनकी चीख सुनाई देती थी किसी भी रोल में तो हर किसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और आंखों में

नमी आ जाती थी। मैं बात कर रही हूँ कोकिला बुलसारा जी की। वैसे ये भी मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस नाम से किसी भी माँ को नहीं जानते हैं, तो चलिए इनका बॉलीवुड नेम भी आपको बता देती हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी निरूपा रॉय जी थी, जिनकी शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में कमल रॉय जी से हो गई। और क्योंकि कमल रॉय जी फिल्मों में काम करना चाहते थे, तो शादी के इमीडिएट बाद वो मुंबई आए और यहाँ आकर उन्होंने फिल्म में काम तलाश करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर हाँ उनकी बेटर हाफ यानी कि निरूपा जी का सिलेक्शन उस फिल्म के लिए हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी नहीं बल्कि गुजराती फिल्म थी, जिसमें उन्होंने गणसुंदरी का रोल निभाया और इसी फिल्म से उन्हें उनका बॉलीवुड नेम निरूपा भी मिल गया। इस फिल्म के बाद उन्हें उनकी सॉफ्टनेस और खूबसूरती के चलते कई फिल्मों में डिवोशनल रोल्स का भी ऑफर मिला। और ऐसे ही कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें हिंदी सिनेमा की 2 बीघा जमीन फिल्म में एक छोटा सा साइड कैरेक्टर मिला, और यहीं से उन पर नजर पड़ी देवानंद साहब की, जिन्होंने अपनी फिल्म मुनीम जी जो कि 1955 में रिलीज हुई थी उस फिल्म के लिए साइन किया, पर एज एन एक्ट्रेस नहीं बल्कि एज हिज मदर। जबकि वो देव साहब से पूरे 8 साल छोटी थी, फिर भी उन्होंने उनकी माँ का कैरेक्टर कुछ इस तरह से निभाया कि बॉलीवुड ने तो इस माँ को अडॉप्ट ही कर लिया। और देखते ही देखते इन्होंने हर बड़े स्टार के साथ काम किया एज देयर मदर। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि पूरी 17 फिल्मों में इन्होंने उनकी माँ का किरदार निभाया, जिसमें सबसे ज्यादा रिमार्केबल काम रहा दीवार फिल्म में। माँ सिर्फ शशि कपूर साहब के पास नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के पास थी। अपने 58 इयर्स के प्रोफेशनल करियर में इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और जिसके लिए इन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। पर इनके साथ कुछ ऐसे नाम जुड़ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में जिसके लिए आज भी लोग इन्हें याद रखते हैं। इन्हें क्वीन ऑफ मिजरी, मदर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। वैसे एक और गौरतलब बात ये है कि जिस भी फिल्म में ये माँ का किरदार निभाती थी, ऑलमोस्ट हर उस फिल्म में इनके बच्चे इनसे दूर हो जाया करते थे, शायद इसीलिए इन्हें क्वीन ऑफ मिजरी कहा जाता है। खैर ये तो मजाक की बात हुई, पर इनके हर किरदार ने कुछ ऐसी छाप छोड़ी है हम पर कि आज भी जब हम इन्हें देखते हैं तो ये कुछ अपनी सी लगती हैं। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन म्यूजिकल ट्रैक्स को। वापस आकर आपको मिलवाऊंगी उस माँ से जो कि राजश्री प्रोडक्शंस की बन चुकी थी पहली चोर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, रहो स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 रात बाकी बात बाकी में आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। इसी सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं दो और ऐसी माओं की जिन्होंने मदर कैरेक्टर को पूरी तरह से चेंज कर दिया बॉलीवुड में। इस सीरीज में पहली माँ है राजश्री प्रोडक्शन की फेवरेट मदर रीमा लागू जी, और वही दूसरी और है आर वेरी ओन नोटोरियस मदर किरण खेर जी। ये दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट रही हैं और यहीं से इन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, पर एज अ लीड इन्हें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। पर जैसे जैसे उम्र ढलती गई इंडस्ट्री ने इन्हें अपनाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक इन्हें मदर रोल्स मिलना शुरू हुए। पर अपने हर रोल को ये दोनों इतनी मस्ती से किया करती थी कि हर कोई इनका दीवाना होने लगा। जहां एक जगह रीमा लागू जी को संस्कारी मॉम कहा जाता था, वहीं दूसरी ओर मॉडर्न और क्विर्की रोल्स मिलने लगे थे किरण खेर जी को, क्योंकि वो अपने हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया करती थी, उसमें इतनी मस्ती और इतनी जान डाल दिया करती थी कि कोई ये जान ही नहीं पाता था कि ये फिल्म का कैरेक्टर है या फिर रियलिटी। रीमा जी को एज अ मदर कामयाबी मिली फिल्म कयामत से कयामत तक में। जूही चावला और आमिर खान की इस फिल्म से एक अलग पहचान बनाने वाली रीमा जी ना केवल बड़े पर्दे पर बल्कि छोटे पर्दे पर भी धमाल मचा रही थी। सचिन पिलगांवकर साहब का एक टीवी सीरियल तू तू मैं मैं से इन्होंने अपनी इमेज बिल्ड की। यहाँ पर जो नोटोरियस मदर इन लॉ का रोल इन्होंने निभाया, दैट वॉज सुपर्ब अमेजिंग। और दूसरी ओर देवदास, हम तुम, दोस्ताना, रंग दे बसंती, ओम शांति ओम, वीर जारा, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों में माँ का रोल निभाकर किरण खेर जी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। वैसे इन दोनों की एक्टिंग में एक चीज बहुत कॉमन थी, ये दोनों ही नॉटी होने के साथ साथ इमोशनल सीन्स भी बहुत सुपर्ब परफॉर्म करती थी। अब यहाँ अगर मैं देवदास फिल्म के उस डायलॉग की बात ना करूं जहाँ गाने पर डांस करने के बाद किरण खेर जी ठकुराइन को कहती हैं कि
1: आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या।
0: क्या बात है, मतलब एक आइकॉनिक सीन जिसे हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी दो माओं को आज हम कर रहे हैं रेडियो महारानी पर सल्यूट। और वहीं दूसरी ओर रीमा जी की हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं, कौन इन फिल्मों का जिक्र नहीं किया तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ट्रैक का और वापस आकर कुछ और खूबसूरत माओं से आपको मिलवाऊंगा।

0: कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है, तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।
1: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: मुश्किल में।
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
0: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
1: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद
0: आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
0: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन
0: रोडवेज वाले?
1: ओके ओके
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे
1: हो।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रेरणा ईरानी जी को बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। 18 अगस्त 1946 में मुंबई में पैदा हुई अरुणा ईरानी ने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके घर के फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म रही गंगा जमुना, जिसमें उन्होंने वैजयंती माला जी के बचपन का किरदार निभाया था। उसके बाद लंबे समय तक वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करती रही, लेकिन कारवां फिल्म से उन्हें एक ऐसी पहचान मिली जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया, जहां उनके डांस अदाएं और अभिनय ने उन्हें दर्शकों की पसंदीदा बना दिया, वहीं उन्होंने हीरोइन, रैंप, डांसर, कॉमेडियन और कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे हर किरदार को निभाया। बॉम्बे टू गोवा, गरम मसाला, दो फूल और हम जोली, ये ऐसी फिल्में रही जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग्स ने लोगों को बहुत हंसाया, लेकिन बाद के दौर में जब उन्होंने माँ के किरदार निभाने शुरू किए तो लोग तो उनकी एक्टिंग के कायल ही हो गए। खास तौर पर यहाँ मैं बात करना चाहूंगी फिल्म बेटा की, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने भी शिरकत की थी। इन सब के बाद उन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। दिलचस्प बात तो ये है कि अरुणा ईरानी जी की कजिन सिस्टर बिंदु भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस रही और हम सब उन्हें मोना डार्लिंग के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को गुजरात में हुआ। इन्होंने अपने फिल्म की शुरुआत अनपढ़ फिल्म से की थी। शुरुआती दौर में उन्हें ग्लैमरस और नेगेटिव रोल से पहचान मिली और दो रास्ते, कटी पतंग, जंजीर जैसी फिल्मों में उनके अंदाज ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे फेमस वैम्प एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। उनकी मोना डार्लिंग की इमेज आज भी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा आइकॉनिक कंसिडर की जाती है। बाद के दौर में बिंदु ने भी माँ और सास के किरदार निभाना स्टार्ट किया। उन्होंने कई फिल्मों में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग मदर इन लॉ का रोल भी प्ले किया, खास तौर पर छोटी बहू और घर हो तो ऐसा। ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें उनकी मदर इन लॉ के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। वहीं दूसरी ओर मैं हूं ना जैसी फिल्मों में उन्होंने मैच्योर फैमिली रोल्स भी निभाए हैं। साथ ही पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा और बीवी ओ बीवी, ये कुछ ऐसी फिल्में रही उनकी जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को भी लोगों ने पसंद किया। इस मदर्स डे पर अरुणा ईरानी और बिंदु जैसी अभिनेत्रियों को हम दिल से याद करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को। वापस आकर बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते हर किसी के दिल की देवी बन गईं।

0: सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई ये शमा तो परवाना ढूंढती है, पर हम ढूंढते हैं उस माँ को जिसने अपनी पूरी जिंदगी हम पर न्योछावर कर दी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6। कुछ हटके सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज रात बाकी बात बाकी में हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही याद कर रहे हैं स्क्रीन की उन सभी मॉम्स को जिन्होंने हमें कभी हंसाया तो कभी रुलाया तो कभी हमें माँ और बच्चे का सबक सिखाया। ऐसी ही एक माँ को आज हम याद करने जा रहे हैं जो है सभी के दिल की देवी, श्रीदेवी। हिंदी सिनेमा में उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि हर दौर की माँ के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना जलवा बिखेरना शुरू किया। सदमा फिल्म की इमोशनल एक्टिंग हो या मिस्टर इंडिया की बबली और एंटरटेनिंग जर्नलिस्ट सीमा, नगीना की नागिन हो या फिर चांदनी की रोमांटिक सिंप्लिसिटी, चालबाज का डबल रोल हो या फिर लम्हे जैसी फिल्मों में लेयर्ड परफॉर्मेंसेस, हर किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, इमोशन, डांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा में ऐसा दौर बनाया जहां पूरी फिल्म सिर्फ उनके नाम से चलती थी। पर श्रीदेवी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो समय के हिसाब से अपने आप को बदलती थी। एक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश से हिंदी सिनेमा में वापसी की, तो ये सिर्फ एक कमबैक फिल्म ही नहीं थी बल्कि एक इंडियन मॉम की उस पहचान की कहानी थी जिसे अक्सर फैमिली के बीच कहीं खो दिया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने शशि नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था जो कि हर घर में मिलती है। बच्चों को बड़ा करने में, उन्हें प्यार देने में ये माँ अपने आप को कहीं भूल जाती है और एक मुकाम पर अपने आप को बहुत ही अकेला पाती है। इस किरदार को न केवल श्रीदेवी जी ने निभाया बल्कि एक बार फिर से बच्चों को भी याद दिलाया कि उन्हें बड़ा करने वाली माँ कहीं पीछे छूट गई है। और इस फिल्म के बाद उन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था मॉम। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के लिए हर दर्द को सहती है और उसे जस्टिस दिलाने के लिए हर बाउंड्री पार कर जाती है। इस फिल्म में श्रीदेवी की इंटेंस परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों ने बहुत ज्यादा सराहा और साथ ही इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से भी सम्मानित किया गया। वैसे ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही अजीब है। कई बार तो बचपन में ही आपको इतना प्यार मिल जाता है कि आपका प्रोफेशनल करियर फ्लरिश करने लगता है, लेकिन कई बार ये आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सालों तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक और अदाकारा ऐसी थी जिन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनका स्वागत बढ़ चढ़ कर किया और कुछ कल्ट फिल्मों में उन्हें काम भी दिया, पर उनकी पर्सनल लाइफ में इतने उतार चढ़ाव थे जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें थोड़ा सा साइड कर दिया, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे ही अदाकारा पहुंची अपनी लेट 40s में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और उसके बाद तो इनके पास काम की कमी ही नहीं रही। ये कोई और नहीं बल्कि नीना गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अपने 50s में आते आते फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर बधाई हो जैसी फिल्में, हर जगह उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। नीना गुप्ता की सिंप्लिसिटी, इमोशंस और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने हर किसी को मजबूर कर दिया कि वो अपनी फिल्मों में इन्हें एज अ मदर कास्ट करें। अब चाहे आप पंचायत सीरीज ही देख लीजिए तो उसमें इतनी ग्राउंडेड एक्टिंग नीना जी ने की है कि पंचायत 2 में भी उन्हें लेना तो लाजमी था। फिलहाल ऐसी हर माँ को जो कि बहुत स्ट्रांगली अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ खड़ी रही, उन्हें हम करते हैं सैल्यूट और चलते हैं और बढ़ते हैं म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: क्यों नहीं?
1: क्या समझो नैना?
0: तुम समझते क्यों नहीं कि कभी कभी पानी को बचाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, वरना पानी का पंगा हो जाएगा।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो मारानी 89.6।

भाई जब भी फिल्म इंडस्ट्री में माँ की बात आती है तो एक चेहरा ऐसा है जो हमेशा हमारी आंखों के आगे आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि फरीदा जलाल जी हैं, जिनका जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ और 60s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इनकी डेब्यू फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी तकदीर। उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आराधना, पारस और बॉबी जैसी फिल्मों से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। अब चाहे वो हमारे काका जी राजेश खन्ना जी हों या फिर बिग बी अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर जी हों या फिर काजोल और ऐसा के, इन्होंने हर दौर के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वैसे अगर बात फरीदा जी की हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर कुछ कुछ होता है मैं, वो जो इमोशनल मदर का उन्होंने रोल प्ले किया था, इन फिल्मों की बात ना करें तो उनके बारे में हमने मानो कोई बात की ही नहीं। और अगर यहाँ ऋतिक रोशन साहब की कभी खुशी कभी गम की बात करें तो उसमें वो जो इमोशनल केयर टेकर का किरदार उन्होंने निभाया था वो अल्टीमेट था। और फरीदा जी की एक और बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि जब वो माँ का किरदार निभाती हैं तो वो सिर्फ अपने डायलॉग से ही आपको इमोशनल नहीं करती बल्कि अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आंखों से भी आपको माँ वाली फीलिंग दे ही देती हैं। खैर अगर बात हो रही हो मदर्स डे की तो इसमें मदर इंडिया को इंक्लूड ना करें भाई, इतनी बड़ी गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकती। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने माँ ना होते हुए भी जवान बच्चों की माँ बनकर पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, वो कोई और नहीं बल्कि हम सब की प्यारी नरगिस जी थी। वैसे माँ करने वाली बात तो ये है कि इस वक्त तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मदर इंडिया जैसी फिल्म में काम करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवा ही लिया। खैर इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार की वाइफ और सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का किरदार निभाया था। और क्या आप जानते हैं कि ये हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसे ऑस्कर्स में भी नॉमिनेशन मिला था। और इन सब की जबरदस्त माइंड ब्लोइंग एक्टिंग स्किल्स ने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया था। खैर माँ चाहे नरगिस हो या फरीदा जलाल या फिर आपकी

या मेरी माँ। माँ तो माँ होती है, हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारी माओ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो ना केवल घर देखती हैं बल्कि हमारे अंदर वो संस्कार भी डालती हैं जिससे कि हम अच्छे इंसान बनकर सबके सामने आते हैं और नाम शोहरत कमाते हैं। फिलहाल वक्त है कुछ गीतों का, आप इंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को। वापस आकर स्क्रीन मॉम्स की फिर से बात करेंगे।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

वैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज देखी गई कि जो भी अदाकाराएं उसे पसंद आई उन्होंने दामन उन अदाकाराओं का कभी छोड़ा ही नहीं। अब चाहे वो राखी गुलजार हो या फिर रेखा जी, ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने अपनी 20s का चार्म बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक फिल्मों में बिखेरा था, वहीं अपने लेट 40s में आते आते उन्होंने माओं के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इस फिल्म इंडस्ट्री को दी। अब यहाँ बात करेंगे राखी गुलजार जी की, जिन्होंने करण अर्जुन, राम लखन और खलनायक जैसी फिल्मों में इमोशनल और स्ट्रॉन्ग मदर का किरदार निभाया। वहीं दूसरी ओर जया बच्चन जी ने कभी खुशी कभी गम और मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन की मां बनकर हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और अगर ऐसी ही खूबसूरत अदाकाराओं की बात हो रही है तो हम अपनी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बागबान फिल्म में एक इमोशनल मदर का कुछ ऐसा किरदार निभाया कि लोग उनके कायल हो गए। और सिर्फ बागबान की ही मैं यहाँ बात क्यों करूँ, जमाई राजा जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित की माँ और अनिल कपूर की मदर इन लॉ का रोल प्ले किया था, और साथ ही और वीर जारा फिल्म में भी बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी माँ के किरदार में।

0: समझते क्यों नहीं?
1: क्या समझना है ना?
0: तुम समझते क्यों नहीं कि कभी कभी पानी को बचाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, वरना पानी का पंगा हो जाएगा।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो मारानी 89.6।

वैसे मैं अब उस माँ की बात करने जा रही हूँ जो कि अपनी 70s में भी बिल्कुल 30s की लगती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वो अदाकारा हैं जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों थे, यानी कि हमारी अपनी रेखा जी, जिन्होंने 1999 में मदर फिल्म में एक सिंगल मदर का किरदार निभाया था और उसके बाद कोई मिल गया, क्रेश, दिल है तुम्हारा और सुपर नानी, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। वैसे आज तक भी ये माँ लगती नहीं है, चलिए ये तो कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए, क्योंकि इन सब ने अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन किया है, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखा है। खैर, माँ चाहे बॉलीवुड की हो या हमारी अपनी, हमेशा ही सम्मान के हैं, बड़ा करती हैं, बल्कि अपने हमेशा ही हमसे रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो बच्चे जो अपनी माँ को जवाब देते हैं या फिर उन्हें कुछ गलत शब्द कहते हैं। तो इस मदर्स डे पर रेडियो महारानी की ओर से आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो माँ जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इतना बड़ा किया, संस्कारी बनाया, उस माँ के लिए कुछ भी गलत कहना सही नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का मदर्स डे बहुत अच्छा जाएगा, आप सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपनी अपनी मदर्स के साथ और अपने अपने बच्चों के साथ। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ का प्यार पाते रहिए। फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आप सभी से इजाजत लेने का। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ अस, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ठठा बाय बाय सायोनारा। फिलहाल छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, जो कि मैंने अभी अभी सुना और मुझे इतना खूबसूरत लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये गाना जरूर सुनना चाहिए। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल एंड लवली मदर्स। हैप्पी मदर्स डे एंड एंजॉय।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: हुआ झुमका?
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: मैनू कहती
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्जुन नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो,

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखें तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।